0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
4: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
4: 96.4,
3: सेंटर
4: 99.4।
1: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: सोमवार 13 जुलाई की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
6: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: उठ गए।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Masti.
3: कहते हैं ना कि अच्छी तरह से अगर आप अपने कदमों को रखते हैं, वो भी सुबह सुबह, तो पूरा दिन अच्छे से बीता है। 5:07 हो रहे हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स। प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। वंस अगेन आपके मंडे मॉर्निंग को खूबसूरत, गुड गुड बनाने के लिए नीतू आ गई है। तो बस व्हेयरएवर यू माइट बी अर्ली राइजर्स, वेलकम टू राइज एंड शाइन एंड रेडियो मस्ती पर सुबह के 7 तक विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। शुरुआत चंद सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ एंड ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस जो ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं ऑन 5499 1294 पर आप सबका स्वागत करने के लिए नीतू एकदम तैयार हैं। बस अपनों को गुड मॉर्निंग, जो भी आप विश करना चाहते, किसी का आज बर्थडे है, बस उनकी मॉर्निंग को आप गुड गुड बनाना चाहते हैं, स्पेशल बनाना चाहते हैं, देन एक प्यारा सा पैगाम अपनों के नाम।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:14 already ho chuke hain. Bahut bahut dhanyawad hamare hum safar banne ke liye. Thank you so much. So, chaliye kuch messages ki aur badhte hain. Good morning, Didu Har Har Mahadev. आप है प्रेमिला जी प्रेंदी पापाए से एंड बस पति के नाम रंजीत और सब परिवार के लिए ज्योति कैसी है प्यारी सी माय डियर फ्रेंड फ्रॉम शातु बिनागस आशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार के नाम ही इज विशिंग अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको हर हर महादेव बेटा है नितेश फ्रेंड्स और आपके लिए भी मीला रामदिकल फ्रॉम मोताबलॉश हैव अ ब्लेस्ड मंडे आपके लिए हैं अंजनी सबके नाम पूरे परिवार के लिए गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर जयशन एंड पूरे परिवार एज वेल मौदालबे से आज भुजल धीरज आयुष विदिशा अश्विन ज्योति साथ में है हरक परिवार हर हर महादेव आपको भाई सूरज शर्मा सजादा एंड परिवार फ्रॉम थ्रियोले नेक्स्ट गाना आपके लिए शीला जी लेस्पेरेंस त्रिबुशे आपके लिए भी ओम नमः शिवाय गुड मॉर्निंग नीतू और मेरी बहू जो है मम्मा बन गई है क्या बात है और बेटा है मुजाहिद पापा बन गए हैं सो न्यू बोर्न परी के लिए फ्रॉम अब्दुल सारा बानू दादा दादी बन गए हैं तो बस बधाइयाँ सब परिवार के नाम

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 24 मिनट बों कोराज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क. चलिए जी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना अच्छी बात होती है, कसरत हो जाती है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा, सर्दी का मौसम भी है. बस बों कोराज एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोस. एंड ऑफ कोर्स 5499 1294 पर एवरग्रीन सदाबहार गाने आपके नाम और लता जी मुकेश की आवाज़ें. चलिए, रोमांटिक ड्यूएट्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.

0: shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 36 मिनट वेल थोड़ी देर रुक जाइए क्योंकि बस इस गीत के बाद इट्स गोना बी योर होरोस्कोप. अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको मिस्टर गुलाब जगा सिंह एंड फैमिली. और गाने अच्छे लग रहे, थैंक यू सो मच. नमस्कार, आप आजू फैमिली होशनवा से एंड यहाँ पर हैं कौन, मिस्टर टूनी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू. दूसरा आदमी वाला गाना आपको अच्छा लगा, थैंक यू पूनम, मोनिका, पल्लवी, राजन, उमेश, अर्शी, हमारे लिए भी गॉड ब्लेस. हर हर महादेव. कुंगुमा से सुया बिहारी, ग्रांड चिल्ड्रन विधि, सोनाक्षी, अवनी, क्यूट वंश एंड गोइंग टू स्कूल, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल बच्चे, बच्चा पार्टीज. एंड ये है नानी की तरफ से एंड दादी सुया सब परिवार की तरफ से.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: तो चलिए जी शुरुआत आपके साथ.
2: एरीज मेष राशि.
1: वेल, आज का दिन आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाला साबित हो सकता है. मेहनत का पूरा फल मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. यदि प्रॉपर्टी, सोना चांदी या किसी कीमती वस्तु की खरीदारी का विचार है तो समय एकदम अनुकूल है. लेकिन हाँ, किसी बड़े फैसले से पहले घर के बड़े बुजुर्गों से राय लेना जरूरी है.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज आपके व्यक्तित्व और काम की सराहना होगी, जिससे सम्मान में बढ़ोतरी होगी. व्यापार करने वालों को किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना होगा. परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है. वहीं मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से खुशी भी आपको मिलेगी.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: ऑलराइट, आज थोड़ा धैर्य यानी कि पेशेंस और समझदारी से काम लेना जरूरी है. अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है. परिवार में चल रही किसी उलझन को बातचीत से सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके सुझाव अधिकारियों को प्रभावित करेंगे और आपकी प्रशंसा भी हो सकती है. वैसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा आपको.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज सहयोग और अवसर दोनों आपके साथ रहेंगे. फैमिली के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन हर कदम पर काम आएगा. आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. दैट्स व्हाई अच्छे अवसरों को हाथ से जाने न दें. हालांकि किसी कानूनी मामले में उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है. वैसे कुछ काम मन को बेचैन कर सकता है और अधूरे काम मन को बेचैन कर सकता है और कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकती है.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज जल्दबाजी और जोखिम उठाने से बचना ही समझदारी होगी. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने काम समय पर पूरे करने की सफल रहेंगे. यदि कहीं घूमने का प्लान बना रही हैं तो बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. संतान किसी बात को लेकर नाराज हो सकती हैं, इसलिए प्यार और धैर्य से बात करें.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: ऑलराइट, आज का दिन संतोष और खुशियों से भरा रहेगा. परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर में रौनक बढ़ेगी. व्यापार में आय बढ़ाने के नए अवसर तलाशेंगे. हालांकि बड़ों के साथ किसी बात पर हल्की नोकझोंक हो सकती है. आज किसी से उधार लेने से बचें और अफवाहों या सुनी हुई बातों पर भरोसा करने से गलती बिल्कुल ना करें.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: निवेश से जुड़े मामलों में किस्मत आपका साथ दे सकती है. शेयर बाजार या फिर निवेश से जुड़े लोगों को अच्छे लाभ के संकेत हैं. सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और घर के लिए कोई नया सामान या जो सामान है वो आप खरीद सकती हैं. वैसे मन की कोई इच्छा पूरी होने से खुशी दुगनी होगी. यात्रा का योग भी बन रहा है, लेकिन निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा बिल्कुल ना करें.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: वेल, आज का दिन पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर रहेगा. माताजी या फिर पिताजी से हुई कोई महत्वपूर्ण बातचीत आपकी कोई परेशानी या फिर कई परेशानियों का समाधान भी निकाल सकती है. यात्रा के दौरान कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा और किसी धार्मिक आयोजन का माहौल भी बन सकता है.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
1: आज का दिन खुशियों और उत्साह से भरा रहेगा. संतान की उपलब्धियां आपको गर्व का अनुभव कराएंगी. हालांकि दूसरों के मामलों में बिना वजह दखल देने या बहस करने से बचें. किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और नौकरी से जुड़े किसी महत्वपूर्ण काम के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज परिवार का सहयोग आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. कई जिम्मेदारियां एक साथ आने के बावजूद आप उन्हें अच्छी तरह से निभा भी पाएंगे. वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल ना करें. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम

0: काम पूरे होंगे और अटका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। वैसे व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत है और जिससे मन प्रसन्न होगा।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज प्रगति के नए दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। आपकी समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। एक के बाद एक अच्छी खबर मिलने के उत्साह बने रहेंगे। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा और किसी बहकावे में आकर प्लीज कोई फैसला ना ले।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज का दिन लाभ और सफलता की नई उम्मीदें लेकर आया है। आपकी मेहनत आपको मंजिल की ओर करीब ले जाएगी। परिवार की ओर से कोई उपहार या सुखद सरप्राइज मिल सकता है। जरूरतमंदों की मदद करने से आपकी भावनाएं जो है लोगों का दिल जीत लेगी। कार्यक्षेत्र में मनपसंद जिम्मेदारी मिलने से काम में उत्साह रहेगा। बेवजह की चिंताओं को छोड़कर जीवन साथी के साथ खरीदारी या फिर घूमने फिरने का आनंद लें। हैव अ नाइस डे अहेड, विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: Let me wish a very good morning. आप सभी को प्यार करने वाले बस हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कैसी हैं प्यारी सी रेखा एंड फैमिली. थैंक यू सो मच हर हर महादेव अमृता फ्रॉम पोएटू साबला. गुड मॉर्निंग आपके लिए भी फ्रेंड्स हैं कामिनी पामिला प्रीति नाज सरोज एंड सेरानी. 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 6 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे. सुमेरा नमस्कार आपको.
6: नमस्कार. और आदाब अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है. कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर श्रेय सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पटरी पर उतरी. इसके जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं. मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोग दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है. ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंक तक पहुंचा है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है. स्कूल वान के अच्छे संचालन और कार्य कुशलता के लिए ड्राइवर के साथ साथ एक हेल्पर का होना ज़रूरी है. मकसद वैन से उतरने और चढ़ने में बच्चों की हिफाजत करना. इसके अलावा अगर बच्चों को सड़क पार करना पड़े

0: तो हेल्पर को उनकी मदद करनी चाहिए। नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हेल्पर को इस काम के लिए एक ऑथराइजेशन कार्ड भी देती हैं। विदेश में बैंकॉक के एक पब में एक भयानक आग भड़क उठी है और कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है और 63 लोग घायल बताए जाते हैं। एक जांच शुरू की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल, आम हालत, उत्तर पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम अच्छा रहेगा। पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लाटू में बाद में कुछ बारिश होगी और बादल घेराएंगे। दोपहर बाद पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू के एक हिस्से पर बादल घेराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। आज रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में बादल घेरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके तेज झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुंदर खराब रहेगा, 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। इसी वजह से इन लगूनों में न जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 20 से 23, साहिनी इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:45, सूर्यास्त 5:06। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.

Why Fair One Radio Musti is here. आपके साथ नीदो भी है ना आपका हम सफर. Thank you so much. Monday morning 13 जुलाई हो चुकी है और 6:10 हो रही है. Welcome back and ये morning आपके लिए खुशगवार हो. बस यही कामना करती हैं कि सही कदम आपने उठाया है. बस आपका दिन अच्छे से बीतेगा. थैंक यू सो मच. यहाँ पर मिस्टर टोनी ने कहा है कि अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू कैन मिस देम. दैट्स सो ट्रू. मौके बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो उनको ग्रैब करना बहुत ही ज़रूरी है. लेकिन चॉइस जो आप करते हो वो बहुत ही ज़रूरी है. रास्ते तो आपके कई मिल जाएंगे लेकिन कौन सही रास्ता कहाँ पर जाना है इट्स अप टू यू. सो बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले. फोकस, कॉन्सेंट्रेट, हैव योर ब्रेकफास्ट, डू नॉट मिस. गुड मॉर्निंग आपको दूतिका फ्रॉम रिविया दिख रहे और रघु जना परिवार एज यूजुअल. वेरी गुड मॉर्निंग संध्या फ्रॉम लॉन्ग माउंटेन एंड नाइट शिफ्ट के में काम कर रही है. ओके अभी तक काम पर है. सुबह को आज टू यू योगिता नितिशा एंड डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू दैम एंड नोत्रदाम से हैं जितने भी स्टाफ जितने भी पेशेंट्स वगैरह हैं सब के लिए बेटा अक्षय. और बस जहाँ भी रहें आबाद रहें खुश रहें. 15th birthday to you, Princess Priyankshaka, Priyakshana, Lakhya of, बल्कि लक्ष्या है रोड्रिग से. प्रवीण, सोना, रविश, प्रिशा, लवशा सब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार. गुड मॉर्निंग ललिता एंड जीतन फैमिली.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: शिवशंकर 17 मिनट कोई कुछ भी कहे भाई, बस आप अपने दिल और हाँ दिमाग का भी आप सुनते चले।

हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे. थैंक यू सो मच. सुप्रभात कहती है रेडियो मस्ती टीम को थैंक यू. और आप है छाया सुकोई फ्रॉम पेल्ग्रेन सेबास्टोपोल. और बस अर्ली राइजर्स के लिए एंड पूरे परिवार के लिए सब के लिए गुड विशेस भेज रही है गुड वर्ब्स के साथ. पति है सुबिराज, बेटा श्रेयस, बेटी शेवी और खास हमारे थैंक यू सो मच माय डियर ब्रिंदा बंगारू और माय डियर गॉड. आप है फ्रॉम गोजबेल और आप कहते हैं कि आपके नेफ्यू यश बंगारू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो परिवार एंड ऑफकोर्स रेडियो मस्ती टीम की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार. अमरीका परशुराम फ्रॉम पोर्टविज गुड मॉर्निंग माय डियर. एंड प्यारी सी रेखा आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार. आपके लिए बेटा अंश पोम्बोजो से सब परिवार के नाम. किशन रघुनाथ जी आप है फ्रॉम सुरीनाम कहते हैं प्लीज़ नेक्स्ट गाना मेरी पत्नी माला के नाम, बेटियां जिया और रिया और बहुत मिस कर रही हैं. तो चले आंखों से दूर लेकिन दिल के हमेशा करीब.

0: Into Radio Musty.
1: Avec Canal+, je stream grand matin, je stream midi, je stream tantôt, je stream à soir. L'autre, tout mon monde est connecté. Côte-moi, la meilleure, côte belle meilleure, n'importe qui l'est.
2: T'as y qui te stream, Goubza?
1: Dernier blockbusters, comme Anaconda, le Canal+, House of the Dragon, saison 3, le HBO, The Lander, le Star Gold, Enola Home, saison 3, le Netflix, à partir de 500 roupies par mois. App Canal+, un clic.
3: Canal+, c'est plus que vous ne l'imaginez. La plateforme qui réunit cinéma, séries, sport, telenovelas, Bollywood, mais aussi HBO, Netflix, le tout au même endroit.
4: Offre soumise à condition à Maurice. Modalité sur canalplus.com.
0: RM2
5: Radio Musty.
6: Already 6:25 बस 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन एंड यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं पूरे परिवार के नाम एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी कॉलेज फ्रॉम मिस्टर कुमार देवीचंद ऑफ पेरेबेया एंड बस बच्चे लोगों को कुछ ही दिनों में छुट्टियाँ भी मिल जाएंगी एंड एन्जॉय कर पाएंगे अभी के लिए आपका ये जो दिन एकदम बेहतर से बेहतरीन हो जाए यही कामना करते हैं 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन

पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। आज से हर रोज इथियोपियन एयरलाइंस की एक उड़ान मॉरिशस की तरफ भरी जाएगी। इस कदम के जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन तथा अन्य सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। ओटवी थिएटर का पुनर्निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में, कल मंत्री महेंद्र गुंडिया ने स्थल का दौरा किया। विदेश में बैंकॉक के एक पब में भयानक आग, 27 लोग जान से गए हैं। नमस्कार, आदाब सभी को। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पटरी पर उतरी। इसके जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन, कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इलाकाई सतह पर ये मॉरिशस के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि अफ्रीका का ये प्रथम हवाई परिवहन है। अब से मॉरिशस की तरफ इथियोपियन एयरलाइंस की रोजाना एक उड़ान भरी जाएगी। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स

0: 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दूसरी बात, मुद्रास्फीति दर में धीमापन नजर आया है, लेकिन परिवारों के लिए घर चलाना अभी तक मुश्किल है। शैली नियबन की रिपोर्ट पर असिता रघु का विवरण।
1: जून 2026 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर यानी एनुअल इन्फ्लेशन 3.7% रही, जबकि एक वर्ष पहले ये 5.4% थी। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि वस्तुओं के दाम कम हो गए हैं। कीमतें अब भी बढ़ रही हैं, लेकिन जून 2025 की तुलना में उनकी वृद्धि की रफ्तार धीमी हो गई है। महंगाई का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक पिछले 12 महीनों की औसत इन्फ्लेशन दर है, जो इस वर्ष 4.1% रही, जबकि पिछले वर्ष ये 2.9% थी। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार लगातार बनी हुई महंगाई के पीछे कई कारण हैं। इनमें ईंधन की बढ़ती कीमतें, मई से बिजली दरों में 15% की बढ़ोतरी तथा कई सेवा क्षेत्रों में लागत में वृद्धि शामिल है। उनका अनुमान है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट नहीं आती है तो वर्ष के अंत तक औसत महंगाई दर बढ़कर 5.7% तक पहुंच सकती है। एक और चिंता का विषय को इन्फ्लेशन है, जो पिछले एक वर्ष में 6.5% पर बनी हुई है। ये संकेत देता है कि कीमतों में बढ़ोतरी अब केवल ऊर्जा और खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में भी फैल चुकी है। इसका सीधा असर आम परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजमर्रा के खर्चों में लगातार बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी क्रय शक्ति पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। वहीं व्यवसायों के लिए उत्पादन लागत बढ़ने से आने वाले समय में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में और वृद्धि होने की आशंका भी जताई जा रही है।
0: मॉरिशस में करीब 20% नौजवान बेरोजगार हैं। बढ़ती महंगाई और पहली नौकरी के लिए मांगे जाने वाले तजुर्बे की वजह से बहुत से नौजवान विदेश जाना मुनासिब समझ रहे हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर भाविश जगन्नाथ के मुताबिक आर्थिक वृद्धि लाना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए नौकरी की ज्यादा संभावनाएं पैदा की जा सकें। स्कूल वैन के अच्छे संचालन और कार्य कुशलता के वास्ते ड्राइवर के साथ साथ एक हेल्पर का होना लाजमी है। मकसद वैन से उतरने और चढ़ने में बच्चों की हिफाजत करना। इसके अलावा अगर बच्चों को सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकी मदद करनी चाहिए। नेशनल लाइन एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी NLTA हेल्पर को इस काम के लिए एक ऑथराइजेशन कार्ड भी देती है। अभी उदय की जबानी पूर्व डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सिरिल अपालाजा को सुनते हैं। आशी बाचु ने उनसे बात की।
2: La tendance, lui, j'ai bien fait une application à l'NTA pour les gagner parce qu'il est capable d'agir avec la tendance. Donc, quand nous donnons.
3: एक अटेंडेंट को NLTA की ओर से एक पास के लिए अपनी अर्जी भेजना होगा। पास देने से पहले हम उस अटेंडेंट की मोरालिटी सर्टिफिकेट भी देखेंगे, क्योंकि वे बच्चों को संभालते हैं। इससे हम अटेंडेंट और बच्चों यानी कि दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के वास्ते इस प्रकार की औपचारिकता अपना रहे हैं। स्कूल वान या फिर बस वान के दरवाजे ठीक से बंद हैं, बच्चे अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, बच्चों के व्यवहार को अटेंडेंट द्वारा नियंत्रित हो। जब एक बच्चा अपने घर तक पहुंचता है तो अटेंडेंट की मदद से वो उतरता है। उतरने के बाद ठीक से देखता है कि उस बच्चे के अभिभावक या एक बड़े उसे लेने आया है या नहीं। इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, तभी वाहन चालक वहां से रवाना हो सकता है। ये काम पूरे अनुशासन के साथ करना जरूरी है। जब तक उस बच्चे का अभिभावक उसे लेने तक नहीं आते हैं, तब तक उस वाहन या फिर बस चालक को इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस तरह के नियम का पालन नहीं किया जाए तो वाहन या फिर बस चालक या फिर उसके मालिक के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। ट्रैफिक एक्ट धारा 76 के तहत उस मालिक या फिर वाहन चालक को सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उनके परमिट को रोक दिया जाएगा।
0: पोटली थिएटर के पुनः निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण से गुजर रहे हैं। कला एवं संस्कृति मंत्री महेन गुंदिया ने परियोजना का जायजा लेने के लिए स्थल का दौरा किया। उन्होंने तसल्ली जताई कि जनता के मनोरंजन के लिए बहुत जल्द इस थिएटर को फिर से खोल दिया जाएगा। निर्मा नारायण रेड्डी, आशिता रघु।
4: À la demande du Lord Mayor, Madame Christelle Ponda et l'adjoint au Lord Mayor, nous finissons faire une visite au théâtre de

0: नगर पालिका की लोन मेयर क्रिस्टेल पोंदा तथा डेप्यूटी मेयर की मांग पर हमने पोर्टलिस थिएटर का दौरा किया जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तले आता है। कह सकते हैं कि कार्य काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, पर जांच से पता चलता है कि इस परियोजना में एक महत्वपूर्ण देरी भी हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार ये परियोजना अगस्त 2026 में पूरी हो जाएगी और इसे पोर्टलिस नगर पालिका को सौंप दिया जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दूंगा कि इस समय सीमा का पालन हो, क्योंकि बहुत समय से इस थिएटर का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद पोर्टलिस नगर पालिका और कला एवं संस्कृति मंत्रालय एक कार्यक्रम सूची पर काम करेंगे जिससे ये जगह जीवंत रहे। गौरतलब है कि 18 वर्षों तक बंद रहने के बाद पोर्टलिस थिएटर को पुनः खोलना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
1: फ्रांसीसी दूतावास की पहल पर कल मनाए जाने वाले फ्रांस राष्ट्र दिवस के सिलसिले में तिल्फेमो का प्रोमेनाद में भव्य गतिविधियों का आयोजन किया गया था। खास पकवान, मिठाइयाँ, संगीत, नाच और दूसरे मनोरंजक पहलुओं के जरिए मॉरिशस और फ्रांस की दोस्ती को और गहरा किया गया। बैंकॉक थाईलैंड में एक मशहूर पब में आग लगने से कम 27 लोग जान से गए हैं, 63 लोग घायल हुए हैं। अभी एक जांच शुरू की गई है ताकि इस हादसे की सही वजह के बारे में पता चल सके। दक्षिण अफ्रीका में 5 हफ्ते पहले शुरू माइग्रेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत करीब 53,000 विदेशियों को वापस उनका मुल्क भेजा गया। ज्यादातर लोग मालावी, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के मुताबिक ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभियान अभी तक जारी है। सालों में गैर कानूनी अप्रवास के खिलाफ ये वहां की सबसे बड़ी क्रैकडाउन कार्रवाई है। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, उत्तर पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम अच्छा रहेगा, दोपहर बाद पूर्व उत्तर और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। और आज रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षाएं होंगी। हवा उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके तेज होंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरख्वास्त है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगुनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 7:45 और सूर्यास्त 6:05।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया। आज से हर रोज इथियोपियन एयरलाइंस की उड़ान मॉरिशस की तरफ भरी जाएगी। इस कदम के जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और दूसरे सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। पोटरी थिएटर का पुनर्निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में, कल मंत्री महेंद्र गुंदिया ने स्थल का दौरा किया। और बैंकॉक के एक पब में भयानक आग, 27 लोग जान से गए हैं। तो ये थी अब तक की स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे टेक्निकी साथी कादिया कुरियन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनबीसी के साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में शोक समाचार। नमस्कार और आदाब। शोक समाचार सुनिए। बसें रोड हाइलैंड्स फिनिक्स में 72 साल की 72 years old मोहतरमा गनसामा बाचू पैदायशी नाम झरिया, जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज ढाई बजे के घर बसें रोड हाइलैंड्स फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए हाइलैंड्स की अशरफी मस्जिद और फिर दफनाने के

ये थोड़ा मामल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट टू पी एम बेजन रोड बेजुकाप में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रोज गोविंद पैदाइशी नाम फौसी जो देवंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज दो बजे इनके बेटे रमेश गोविंद के घर बेजन रोड बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमौता की शमशान भूमि दी जाएगी क्रोमेशन टुडे एट 2 पीएम बासन रोड 92 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अनंती रामनोद पैदाइशी नाम दोमा जो रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे सतीश रामनोद के घर बासन रोड 92 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रोमेशन टुडे एट 3 पीएम जॉन केनेडी स्ट्रीट गांव गोब में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री शिव कुमार मकुन जो पंपो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज सवा बारह बजे इनकी माँ कमला मकुन के घर जॉन केनेडी स्ट्रीट गांव गोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि दी जाएगी क्रोमेशन टुडे एट 9:15 रोशनी रोड फोंजूसाक में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री चबीलाल दियापुल जो राजन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और डीबीएम के पुराने कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज ढाई बजे इनकी पत्नी सुनीति दियापुल के घर रोशनी रोड फोंजूसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजूसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM रॉयल रोड उशित याकूज में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड श्री पुसंदत शर्मा दिनारान जो बाईजीना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और मोतालों के सुंदर मानगाकों कॉलेज में पढ़ाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके घर रॉयल रोड लोशित याकूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM कांपुरान पुस्त डु फ्लैक में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्रीधीरज बुदन जो मान्ना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 12 बजे इनकी माँ बसेंती मोगो के घर कांपुरान पुस्त डु फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रोमेशन टुडे एट 9 कॉम्प्लेसिफ शुगर एस्टेट में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री लक्ष्मण आसेरीगाडू जो बेतुक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे की पत्नी कंचना देवी आसेरीगाडू के घर कॉम्प्लेसिफ माउंट शुगर स्टेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 10 AM नंबर B06 NHDC अल्मा में 29 साल के 29 ईयर्स ओल्ड श्री बोबोलेन चुकेन की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे इनकी माँ प्रेमा चुकेन के घर नंबर B06 NHDC आलमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रोमेशन टुडे एट 11 AM बंगाली रोड बुसोंज में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री शिवराज बोवू जो शिवराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे इनकी माँ लक्ष्मी बोवो के घर बंगाली रोड बोसोंश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोटा सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 AM ब्रामस्थान रोड जकफ्रूट लेन अमिची में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री गणेश कुमार गुंडो जो कालू ताइया के नाम से ज़्यादा जाने जाते कालू तोलिए के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनकी पत्नी मीरा गुंडो के घर ब्रह्मस्थान रोड जैकफ्रूट लेन अमिचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशनुआ की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM B03 सिटी 3 बुटीक यूनियन वेल में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री राजेश मोदे जो पापों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके घर B03 सिटी 3 बुटीक यूनियन विल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए
प्लेन मांगे।

की शमशान भूमि दी जाए जाएगी क्रोमेशन टू डी एट 1 पीएम मुसलमान वीओएस रुइसो डू डेलिस विलनुआ में 68 साल के 68 इज ओल्ड श्री अमरिका सिंह उबिलक सिंह श्री अमरिका सिंह उबिलक सिंह जो बाई के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थे आज 10 बजे इनके दामाद कालिदीन राजीव के घर मुसलमान वीओएस रुइसो डू डेलिस विलनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 10 AM Avenue Delis, Canot, Albion में 58 साल के 58 years old, श्री नवीन दत्त लोफोर, जो मेरेलाल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज दो बजे के घर Avenue Delis, Canot, Albion से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू के शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM Bagirati Ramprasad Street, Angri Mosia, le coulé mais Chawali Salke, 44 years old, Shri Yogesh Jawala Parsan, Shri Yogesh Jawala Parsan, Jo Yogesh ke naam se zyada jaane jaate the ki mrityu ho gayi hai, aur thi aaj subah pone 10 baje inki maa Meeta Maipat ke ghar Bagirati Ramprasad Street, Angri Mosia, le coulé se uthakar antim sanskar ke liye Sulfirino va qua ki shmshan bhumi li jai jaygi. Cremation today at 9:45 AM. Impasse Frédéric Bonnefin qpip me Sosalki 100 years old Shrimati Minachi Bisesso pedashina muti jo akafi ke naam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi hain arthi aaj dopahar baad 1 baje ke ghar impasse Frédéric Bonnefin qpip se uthakar अंतिम संस्कार के लिए बिगावा की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM मामजेल जान रोड गुडलैंड्स में 79 साल की 79 इयर्स ओल्ड श्रीमती तारामती मितन पैदाशी नाम बहादुर जो तारा के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज साढ़े ग्यारह बजे इनके बेटे श्याम मितन के घर मामजेल जान रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रेमेशन टुडे एट 11:30 AM नंबर 26 नंबर 26 टेल्फे एवेन्यू कैट्रोबोन में 82 साल की 82 इयर्स ओल्ड श्रीमती विद्यावती बेनी प्रसाद पैदाइशी नाम बीरबल जो मगाजीन के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज पौने दस बजे के बेटे अनी बेनी पौसाद के घर तेल्फे एवेन्यू कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रेमेशन टुडे एट 9:45 AM बॉम्बे स्ट्रीट पिटर अफ्रे में 58 साल की 58 इयर्स ओल्ड श्रीमती चंद्रानी रघुबा पैदाइशी नाम मीटन जो सुनीता के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज 11 बजे के पति सचिदानंद रघुबा के घर बॉम्बे स्ट्रीट पिटर अफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिटर अफ्रे की शमशान भूमि ली जाएगी क्रेमेशन टुडे एट 11 AM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है

मॉर्निंग की शुरुआत जब बेस्ट तरीके से हो जाए ना विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक तो दिल का करार खो ही जाता है. 6:56 बस अब नीतू के जाने का टाइम हो गया है. मिलेंगे कल 12 से 2 के बीच इन रेट्रो रिदम, जबकि हमारी बात वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट. हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे सेफ.

0: Un nouveau voyage commence pour Maurice. Avec Ethiopian Airlines, la route Maurice-Addis Abeba ouvre l'accès à plus de 145 destinations à travers l'Afrique et le monde. Pour les affaires, les études, la famille ou l'envie de découvrir ailleurs, une nouvelle option s'offre à vous. Contactez votre agence de voyage pour organiser votre prochain départ avec Ethiopian Airlines.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: दोस्तों कहते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग में आपने मन लगा दिया तो हमेशा की तरह आप जानते हैं, मैं एक ही डायलॉग मारती हूँ क्योंकि मंडे में मन लगाना ज़रूरी होता है और यहाँ पे अगर मन लग गया ना तो पूरा वीक अच्छा जाता है. सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. चलो बताओ, अभी घर से निकल गए हो काम पर जाने के लिए या अभी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो? कुछ लोग तो अभी भी सो रहे हैं. कितने लकी होते हैं, 7 बजे मम्मी उठाती है, उठ जा बेटा, उठ बे, उठ जा, 8 बज गए. नहीं, 7 बजे को 8 बजे बोलते हैं ना, तभी तो बच्चा उठता है. तो चलो इसी के साथ आपका हम वेलकम करते हैं. हमारी आवाज़ पे मत जाइए, मैं ही हूँ वेरिता, आपका साथ दे रही हूँ. बस थोड़ी सर्दी खांसी ने परेशान करके रखा हुआ था. मैं बोलती थी ना, ये बिल्कुल डर फिल्म में जो शाहरुख खान था, जो किरण करके आता था, ये करके हमारा पीछा करता है लेकिन एंड में छूट ही जाता है. चलो इसी बात पे एक गेम और आपके लिए टिकट लेकर आए हैं. आप जीत सकते हैं एक टिकट टू द गोल्डन 90s era 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य. इनका लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है सैटरडे 25 जुलाई को और ये होगा 7:30 PM. मेरा सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि ये कहाँ पे होने वाला है, जगह का नाम बताइए. जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि ये जो अभिजीत जी का गोल्डन 90s era 2 हो रहा है, ये लाइव कॉन्सर्ट कहाँ पर होने वाला है ऑन 25th of July. और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो रोमांस का एरा था ना, आप इसको एक बार फिर से जीत जाएंगे. और ये जो कहते हैं ना, इसको टाइमलेस मेलोडीज़ कहते हैं और ये जो लेजेंडरी हिट्स है, प्यूरा जो मैजिक है, आपको मौका मिलेगा. तो बताइए कहाँ पर होने वाला है ऑन 5491294.
1: मॉर्निंग बीट, a good beat for your morning show.
2: James. RM2 Radio Musti in the mix.
4: DJ wale babu mera gana chala to.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: अजी गांव की हो या शहर की हो, कौन है जो अभिजीत दा के गाने पसंद नहीं करते? सभी पसंद करते हैं, इसीलिए तो यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप जाकर ये जो गोल्डन 19 एरा 2 है फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य, इसका हिस्सा बन सके। तो ये लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है ऑन 25th of July 7:30 PM। कहां पर होने वाला था यही तो सवाल था। ये होने वाला है एट SBICC Pi। एकदम सही, और सवाल इतना आसान था कि यहाँ पर मुझे इतना टाइम लगा सारे जो नाम है उनको चुनने के लिए और लकी ड्रॉ करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और चलो भाई, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो टिकट्स जो है वो 850 rupees से शुरू हो रहा है, और ये आपको मिल सकता है atmuchke.mu या गिजो तायु पर टिकट आप ले सकते हैं। एंड अगर आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं, यू कैन कॉल द हॉटलाइन, इट्स 4669999। रिपीट 4669999। तो बताइए कि आपका फेवरेट गाना कौन है अभिजीत दी का? तो अभिजीत जो है, इनके इतने सारे गाने हैं, अगर आपका कोई पसंद का गाना है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकती हूँ। अगले आवर में भी ये गेम होने वाला है, सो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, उनके गाने हम मस्त चलाएंगे, और उनको एक बार फिर अगर आप लाइव जीना चाहते हैं तो ये कॉन्सर्ट आपके लिए एकदम ज़रूरी हो गया है। तो करना क्या है, टू स्टेप इन टू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, एंड फिर से उन लम्हों को जीने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। सो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। लकी ड्रॉ के बाद नाम किसका आया? ओके, तो यहाँ पर विनर है आशा नरसी जोईदाऊ, जो रहती हैं शामनी। कंग्रेचुलेशंस माय डी, आपको मिल रहा है एक टिकट टू दी गोल्डन 19 एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। ये टिकट आपको कलेक्ट करना है, आपको लेकर आना है अपना ID कार्ड @MBC। जी हाँ, अपना ID कार्ड MBC लेकर आइए, और फिर उसके बाद अपना जो टिकट है आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि आपको सुबह 9:30 और 3:30 बजे के बीच आना होगा। एंड कंग्रेचुलेशंस।

एक और ब्यूटीफुल सा गाना जिनकी जीत नहीं हुई, याद रखिए हम फिर से गेम लेकर आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपकी भलाई इसी में है भाई। और उनका कोई फेवरेट गाना अगर आपको पसंद है तो प्लीज लेट मी नो 1549 1294। अभी हम बर्थडे

0: हेलो प्रभा, हेलो
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग प्रभा जी, नमस्ते
1: नमस्ते. इज इट वेडिटा?
0: ओह नो नो नो नो नो नो नो नो, दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग.
1: इट्स नॉट चीटिंग एक्चुअली, इज योर वॉइस. आई नो योर वॉइस.
0: नो प्रभा जी, क्या कर दिया प्रभा जी, मैं इतने अभी मस्ती के मूड में हूँ ना, मैंने सोचा मैं आज से, देखो मैं अभी मस्ती करने के मूड में थी और मैं नीतू को बोल रही थी देखना अभी मैं इनसे गाना गवाऊंगी. आपने तो पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया प्रभा जी.
1: मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ और आपकी आवाज जो है ना फोन पे भी वैसे ही है जैसे रेडियो पे होता है.
0: पर मैं तो बड़ी खुश हो रही थी कि मेरी आवाज बहुत सारे लोग अभी पहचान रहे. अभी खांसी सर्दी की वजह से बहुत सारे लोग मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हैं. खैर, आपने पहचान लिया तो आपको हमारी पूरी रेडियो मस्ती की ओर से हैप्पी बर्थडे. आपके लिए
1: थैंक यू सो मच.
0: आपके लिए बहुत प्यारा सा मैसेज आया था एंड चलो यहाँ पर आपको हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आपकी पूरी फैमिली की तरफ से. एंड आई जस्ट होप कि आज का दिन जो है ना आपके लिए बहुत खास हो. और यहाँ आपका मैसेज आपकी बेटी की तरफ से आया है. वी हैव जीना एंड शीना एंड हस्बैंड उमेश. ओके, सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. चलिए बताइए क्या करती हैं, आज का प्लान क्या है?
1: मैं तो एक होम मेकर हूँ
0: जी.
1: एंड
0: यानी कि घर की सारी जिम्मेदारी आपके सर पे है ना?
1: हाँ जी, वैसे तो कहते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ लेकिन पता नहीं मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ.
0: आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप नहीं तो हाउस नहीं चलेगा.
1: ये तो है.
0: ठीक है, तो चलो आई होप कि
1: आपका प्लान तो जी, कुछ ना कुछ तो मैं प्रिपेयर करूंगी लेकिन शाम के लिए पता नहीं बच्चे पता नहीं क्या करेंगे.
0: बच्चे पता नहीं क्या करेंगे,
1: पता नहीं लेकिन अपनी तरफ से जरूर कुछ करूंगी.
0: ओके, ये बहुत अच्छी बात है. अपने फ्रेंड्स से मिलिए, बाहर जाइए, शॉपिंग कीजिए. एंड आज खाना नहीं बनेगा. आज आप खाना नहीं बनाएंगे, आज आप डिनर बाहर करेंगी. एंड आई होप कि आप बेटियां सुन रही
1: करूंगी.
0: बिल्कुल, आज मम्मी को शॉपिंग कराओ, उमेश जी अपनी पत्नी को शॉपिंग कराओ, उनको बाहर लेके जाओ. आज किचन से छुट्टी, आज वो खाना नहीं बनाएंगी. एंड आज मम्मी को
1: हाँ, इसीलिए तो मैंने एक बहुत बड़ा वो लॉक है ना वो खरीदा है
0: आज किचन में,
1: किचन के लिए.
0: वेरी गुड. आज किचन में ताला. आज प्रभा जी जाएंगी शॉपिंग करने, बाहर खाना खाएंगी और मस्त हो जाएंगी. हमारी ओर से आपको बहुत बहुत सारा प्यार है. हैप्पी बर्थडे.
1: थैंक यू सो मच वेदिता जी, आपको शुभ दिन.
0: थैंक यू. बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस.
1: लव यू टू, थैंक यू सो मच.
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका.
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363.
2: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस.
3: डोंट मिस इट.
4: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट. स्पोर्ट्स न्यूज.

0: Jones.
1: Radio Musti in the mix.
2: एंड इट्स टाइम कि हम वेलकम करें अरविंद का. बता रहे थे कि अभी प्लेयर्स जो हैं थोड़ा आराम भी कर रहे हैं एंड जम की तैयारियां चल रही हैं. है ना अरविंद, गुड मॉर्निंग टू यू.
3: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. अगर आई एम नॉट मिस्टेकन तो जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है शायद ये पहली सुबह है जब मेरे पास आपको कल के खेले गए मैचों के नतीजे और आज के फिक्स्चर्स के बारे में बताने के लिए कुछ है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल और आज आराम के दिन है. सेमीफाइनल के इंतजार में बची चार टीमें जमकर तैयार हो रही हैं. पहला सेमीफाइनल कल 11 बजे फ्रांस वर्सेस स्पेन, फिर परसों वेंसडे मैच अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड. दोनों सेमीफाइनल्स MBC TV 11 और MBC प्ले अप पर लाइव दिखाए जाएंगे. नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच के बाद इंग्लैंड के बॉस टोमस टूरेल ने कहा कि वो अपनी टीम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है. भाग्य हमारे साथ है, वी गॉट लकी. बहुत ढीले रहे, बहुत टेक्निकल. हैरी केन ने कहा कि वो अपने कोच के फ्रस्ट्रेशन को समझता है क्योंकि उसे पता है हम इससे कई बेहतर खेलने की तैयारी करते हैं. वी स्टिल फील वी कैन इम्प्रूव. इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना ये कोई साधारण मैच नहीं है, एक ऐतिहासिक राइवलरी. फुल स्टोरी आपको देंगे स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन में RM2 8:30 AM. फीफा के प्रेसिडेंट यानी इन्फेंटिनो ने कहा पूरी दुनिया को वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए. 64 टीमों का वर्ल्ड कप हो सकता है. अभी 48 टीमें हैं, मतलब और 16 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो पाएंगी. अगले वर्ल्ड कप में 6 होस्ट नेशंस हैं, मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन, अर्जेंटीना, पराग्वे और यूरुग्वे में मैच खेले जाएंगे. ट्रांसफर न्यूज, आर्सेनल अपना प्री सीजन शुरू करने से पहले एटलेटिको मैड्रिड और अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज को साइन कर लेना चाहता है. जिस तरह से अल्वारेज ने गोल स्कोर किया अर्जेंटीना के लिए, लगता है उसका दाम 10 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से बढ़ जाएगा. फ्रीबर्ग और नेदरलैंड्स का मिडफील्डर योआम मनजाम्बी आखिरकार आस्टन विला में जा रहा है. न्यूकासल यूनाइटेड में आने वाला था लेकिन विला ज्यादा पसंद है मनजाम्बी को. अटलांटा और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एडिसन को लेकर निगोशिएशंस रुक गई है, मतलब एडिसन यूनाइटेड में नहीं आएगा. न्यूकासल यूनाइटेड जापान के गोलकीपर जियोन सुजुकी से बात कर रहा है. सुजुकी फार्मा का गोलकीपर है. क्रिकेट, इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार के लिए वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट में दो कीर्तिमान, दो हिस्टोरिकल मोमेंट्स. एक तो यष्टिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाली पहली बैट्समैन बनी. साथ में गेंदबाज बॉलर क्रांति गौरी लॉर्ड्स के टेस्ट ऑनर्स बोर्ड में अपना नाम लिखने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी. 5 विकेट लेने वालों का नाम वहां ऑनर्स बोर्ड में लिखा जाता है. आज आखिरी दिन का खेल होगा. 6 विकेट खोकर इंग्लैंड की टीम 347 रन पर खेल रही है. केवल 4 विकेट लेकर भारतीय टीम इतिहास रच सकती है. लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली महिला टीम. वैसे अभी इंग्लैंड को जीतने के लिए 335 रन बनाने हैं, जो काफी मुश्किल हो सकता है केवल 4 विकेट में. विंबलडन ओपन का किंग बना यानिक सिना. पहला सेट वेरेव ने जीता, फिर उसके बाद 3 सेट जीतकर यानिक वेरेव चैंपियन बना. ये सिना का दूसरा विंबलडन टाइटल है. इधर साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के स्टेज 9 में माथ्यू वान डे पोएल की जीत हुई. फ्रांस में हाई टेम्परेचर, गर्मी को लेकर स्टेज को 30 किलोमीटर से कम किया गया. डिफेंडिंग चैंपियन तादेज पोगाचा के पास येलो शर्ट है. आज आराम का दिन होगा. तो टूर डे फ्रांस में आराम का दिन, वर्ल्ड कप में भी आराम का दिन आज और कल से सेमीफाइनल शुरू. गेट रेडी फॉर द बिग फिनाले इस संडे को. और ये सभी 4 मैच यानी 2 सेमीफाइनल, 1 थर्ड प्लेस मैच और द फाइनल, द बिग फाइनल एमबीसी टीवी 11 पर लाइव और एमबीसी ऐप पर भी आप लोग ये मैच देख सकेंगे. फुटबॉल ही फुटबॉल एमबीसी टीवी और एमबीसी रेडियो के साथ. एंजॉय कीजिए. हैव अ वंडरफुल वीक अहेड. डोंट फॉरगेट, कैच यू एट 8:30 फॉर द लेटेस्ट वर्ल्ड कप मैगजीन. बाय बाय.
2: थैंक यू. और मैं सोच रही थी आपको वापस आना है ना 8:30 बजे.
4: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियो मस्ती. विनीता का साथ है आपके मॉर्निंग बीट में. गुड मॉर्निंग. आज मंडे 13th of July, हैप्पी बर्थडे. अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट योर मैसेजेस ऑन 549 and 1294. थोड़ी देर में बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर.

चलिए इसी के साथ विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे टू ट्विंस आनिया एंड अजिनय, जो कि 4 साल के हो रहे हैं आज. उनको बहुत सारा प्यार उनके पेरेंट्स की तरफ

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Namaste aur salam. Phajr ke 8 baje jalba. Awaaz samachar sunaja Africa aur duniya ke baaki hissa mein जाए खातिर मुरीस के वास्ते एगो नवा द्वार खुल गल बाते कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस के पहली उड़ान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पटरी पर उतर कर रहल एकर जरिए देश के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत होल बाते और पर्यटन कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नवा संभावना पैदा हो गल रहल बाती। मोरिस में गैल जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ गल बाते। ये आंकड़ा 111.9 अंक से बढ़कर 112.2 अंक तक पहुंचे बा। स्टैटिस्टिक्स मुर्शस के हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आल बाते। स्कूल वान के अच्छे संचालन और कार्यकुशलता खातिर ड्राइवर के साथ साथ एगो हेल्पर का होना लाजमी बाते। मकसद वान से उतरने और चढ़ने में बच्चे के हिफाजत करे बाते। एक अलावा अगर बच्चे के सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकर मदद करना चाहिए। विदेश में बैंकॉक थाईलैंड में एक मशहूर पब में आग लगल कम से कम 27 जना के मौत हो गल बाते। 63 लोग घायल होलबा। अभी एक जांच शुरू हो गल बाते। तो ये रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।
0: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: change. RM2, Radio Musty, in the mix.
1: Jeez, the video.

0: तो जितने भी लोग इस समय घर से निकल रहे हैं, गाड़ी चेक करके बाहर निकलिएगा और आराम से गाड़ी चलाइएगा.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: Very good morning. सुबह के 8:08 हुए हैं विनीता आपके साथ. Hello, good morning. कैसे हो? भाई हम तो ठीक ठाक हैं, बस आवाज थोड़ी साथ दे दे हमें, और क्या चाहिए, बस थोड़ा सा साथ दे दे. चलो तो यहाँ पर हम अपने सेकंड आवर में आपका स्वागत करते हैं. एंड मौसम कैसा रहेगा सोचने वाली बात है. मौसम कैसा रहेगा तो मौसम के बारे में सुमेरा से मिले.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ओनली टू विनर्स.
4: आम हालत, उत्तर पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर कर रहे हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह आमतौर पर मौसम अच्छा रहेगा. पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटू में बाद में कुछ बारिश होगी और बादल घेर आएंगे. दोपहर बाद पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटू के एक हिस्से पर बादल घेर आएंगे और रह रहकर वर्षा होगी. आज रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू में बादल घेरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी. हवा उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसकी तेज झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. लगूनों के उस पार समुन्दर खराब रहेगा. 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में. इसी वजह से इन लगूनों में न जाने की दरखास्त है. तापमान, सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 20 से 23. साहिनी इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 6:06.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
5: Krusty, on fait quoi aujourd'hui?
6: On va à l'aventure!
5: À l'aventure?
6: Oui, Soso, à l'aventure du sucre!
7: Découvre l'histoire du sucre avec Soso et Krusty. En ce moment, dans ton Tiki Fun Meal, un ticket enfant pour l'aventure du sucre t'est offert. Profites-en vite!
8: Finger-licking good, KSC.
9: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Les 250 g de café granulé Winners à 139,95 € et les 3 kg de lessive en poudre machine ou main d'Ethos à 149,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
10: On est tous Winners.

0: Sushi, The Long Shift, commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों लाइफ में हमें कभी कभी कुछ मिलता है, कभी कभी कुछ खो जाता है। हर वो चीज़ जो पहले सेटबैक लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो एंड हो। कभी कभी वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, क्योंकि जो तुमसे छूट गया शायद वो तुम्हारे लिए था ही नहीं, और जो आने वाला है वो उससे कहीं बेहतर होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यही तो होता है कि ऐसी सिचुएशन जो शुरू में बुरी या डिसअपॉइंटिंग लगे, लेकिन बाद में पता चले कि उसने आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी, लेसन या डायरेक्शन क्रिएट कर दिया है। कभी जॉब लूज कर देते हैं हम तो दुख होता है, कुछ महीने बाद एक बेटर कंपनी में रोल मिलता है, हायर सैलरी के साथ, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, तब समझ में आता है कि पहली वाली जॉब का जाना ज़रूरी था, तभी तो हमें ये दूसरी वाली जॉब मिलती। सुनो, हर डिले डिनाइल नहीं होता। कभी कभी लाइफ तुमसे उस रास्ते से हटा दिया और उसकी जगह आपको कहीं और आपके कदम बढ़ा दिए, तो ऐसा होता है ना कि वो जो मंजिल आपकी तरफ आपके पैर उनको खींच के लेके जा रहा है वो आपके लिए बेहतर होता है। तो लाइफ में जब कभी कुछ छूट जाता है ना, तो दुख मत करना, रोना, अफसोस मत करना। हाँ, अटैचमेंट होती है, कुछ दिन की होती है, लेकिन बस इतना यकीन रखना कि कुछ बेटर होने वाला है। And trust me, सच में होता है।
0: Avant ton défi, The Long Shift. Commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, The Long Shift. Ton premier pas qui capable sens toujours dit, il a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Il n'y a pas une simple tasse, il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Oui.

0: A good beat for your morning show.
1: And yes, चलिए एक और सवाल आपके लिए और यहाँ पर अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिल सकता है एक टिकट टू विन द नाइट गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट जो होने वाला है सैटरडे 25th ऑफ जुलाई 7:30 PM at SBICC Paya. हाँ जी तो यहाँ पर हम स्टेपिंग करेंगे इन अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रिलीव द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइन बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा यू कैन एंजॉय द इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक टिकट्स 850 rupees से शुरू और ये mujhke.mu और रिजो तायू में आपको मिल सकता है तो इस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट का जो एक्सपीरियंस है इसको मिस नहीं करने का जल्दी से रिजर्व करने का हॉटलाइन कॉल करने का 4669999 पे रिमेंबर इट्स 4669999 अब करना क्या है आपको मैं आपके लिए गाने चला रही हूं जी गाना सुनो और बताओ ये किस मूवी से लिया गया है अभिजीत दा की आवाज में है गाना सुनिए और मुझे बताइए किस मूवी से लिया गया है जल्दी करो 5491294 पे जवाब भेजो

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM2
3: Radio Musty.
2: Feel the musty.

दोस्तों हमने आपके लिए गाना चलाया था और हमने आपसे सवाल किया था, हमने पूछा था कि वो गाना किस मूवी से लिया गया है, एंड द राइट आंसर इज यस पर्सन। यहां पर हमें सही जवाब देकर विनर बनी है कौन, ये जानना जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमें सही जवाब दिया है करिश्मा देवी सिंह।

0: नहीं, और आप रहती हैं बुबा से। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यस बॉस फिल्म का गाना हमने आपके लिए चलाया था एंड बहुत ही कमाल का गाना है ना। मैं जानती हूँ आप लोग भी गा रहे थे मेरे साथ, लेकिन घबराए नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ अभी मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या मिल रहा है एज गिफ्ट। आपको मिल रहा है एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य, जो कि मॉरिशस में आ रहे हैं अपने कॉन्सर्ट के लिए ऑन 25th of July। जी हाँ, 25th of July 7:30 PM SBICC पाए। तो आपको ये टिकट जो है आकर MBC कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, अपना ID कार्ड लेकर आना है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 से दोपहर के 3:30 के बीच। ऑल राइट, अब आपको पता चल गया आपको क्या करना है। जल्दी से आए, अपना टिकट ले आए हैं एंड बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्सर्ट, जहां पर यादें 90s की यादें, 90s के गाने, 90s का रोमांस आप याद करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स, प्योर मैजिकल जो म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा, आप एकदम दीवाने हो जाएंगे। डोंट फॉरगेट, टिकट्स 850 रुपीज से स्टार्ट होता है। mujhtiket.mu अगेजो तायु पे आपको मिल सकता है, और रिजर्वेशन के लिए यू कैन कॉल दी हॉटलाइन 4669999 पर। और अभी समय हो गया है मिलने का हमारे दोस्त अरविंद। आर यू रेडी?
1: इट्स द वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RM2 विद माइटी।
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: Radio Masti ki team ke saath
3: chaliye
2: United States, Canada, or Mexico.
3: Radio Masti ke saath
2: World Cup magazine.
4: World Cup magazine aur RM2 football maidan mein Lionel Messi ne sab kuch kiya hai, sab kuch jeeta hai. Argentina ke liye 125 goal. 8 बार बालों दो, वर्ल्ड कप, यूरोपियन चैंपियंस लीग, कोपा अमेरिका सब जीत चुका है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले का रिकॉर्ड मेसी का ही है, पर अभी तक मेसी का सामना इंग्लैंड से नहीं हुआ है, होगा इस बुधवार को पहली बार। इस वर्ल्ड कप में पहली बार लियोनेल मेसी एक मैच में नहीं स्कोर कर पाया। टोटल अभी उसके पास 8 गोल है। लियोनेल मेसी से बराबर रहे अभी किलियान एम्बापे। इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच मेसी के लिए आसान नहीं होगा। अर्जेंटीना में मेसी है तो इंग्लैंड में जूट बेलिंगम और हैरी केन है। पर्सनालिटी और ओगा बराबर। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि अर्जेंटीना का एक्स्ट्रा टाइम शो हर बार नहीं चलेगा। केप वर्दे, इजिप्ट और स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में जीत पाए, पर इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के चट्टान जैसे डिफेंस के खिलाफ अर्जेंटीना का काम आसान नहीं होगा। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप में यादगार मैच रहे हैं। फुटबॉल राइवलरी दैट गोज बैक टू जेनरेशंस, आइकॉनिक, जेनरेशनल क्लासिक मैच होते हैं इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच दुश्मनी 1962 से शुरू होती है। ये केवल ऑन फील्ड मतलब फुटबॉल मैदान की राइवलरी नहीं, पॉलिटिकल टेंशन भी फॉकलैंड आइलैंड्स वॉर 1980 में। कौन भूल सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को? अभी तक दोनों टीमों के फैंस इसको लेकर गीत गाते हैं। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच 5 मैच खेले गए, इंग्लैंड का दबदबा रहा है। 1962 में इंग्लैंड ने 3-1 से अर्जेंटीना को हराया था। 1966 जिस साल में इंग्लैंड की टीम चैंपियन बनी थी, क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने 1-0 से अर्जेंटीना को हराया था। जॉर्ज हर्स्ट का कंट्रोवर्शियल गोल, ये एक इल टेम्पर्ड मामला था। इंग्लैंड के कोच एल्फ रामसे ने अर्जेंटीना को एनिमल्स, जानवर कहा था। मैच इतना गर्म रहा कि फीफा ने येलो कार्ड और रेड कार्ड को लागू किया 1970 वर्ल्ड कप में। 1986 अर्जेंटीना का बदला, अर्जेंटीना 2 इंग्लैंड 1, मेक्सिको क्वार्टर फाइनल, यहीं पर माराडोना का हैंड ऑफ गॉड गोल रहा। 4 साल पहले दोनों देशों के बीच फॉकलैंड वॉर लड़ गई थी, पॉलिटिकल टेंशन था। माराडोना का जीनियस मैच, पीटर शिल्टन गोलकीपर था, छोटे कद का माराडोना गेंद को पंच करके नेट में भेजता है। इंग्लैंड वाले बहुत चिल्लाए, पर अफसोस उस समय वार नहीं था। इसी मैच में माराडोना का वो सोलो गोल था इंग्लैंड के खिलाफ, लगभग 6-7 खिलाड़ियों को ड्रिबल करके गोल स्कोर करता है, द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप गोल माना जाता है। 2005 में माराडोना ने हैंड ऑफ गॉड मामले के लिए माफी मांगी थी, जिसे पीटर शिल्टन ने

0: किया था। 1998 अर्जेंटीना 2 इंग्लैंड 2 पेनाल्टी पर अर्जेंटीना की जीत, इसमें माइकल ओवन का वंडर गोल था। ये मैच डेविड बेकम कभी नहीं भूलेगा। जोगो सिमियोने पर फाउल से उसे रेड कार्ड दिखाया गया था। पेनाल्टी में डेविड बाटी और पॉल इंस चूक गए थे। बाद में डेविड सिमियोने ने कहा कि जानबूझकर वो गिरा रेफरी को ठगने के लिए। रेफरी उल्लू बना, रेड कार्ड दे डाला जबकि येलो कार्ड होना चाहिए था। 2002 में इंग्लैंड का बदला, ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 0, डेविड बेकम का गोल, स्टेज इज सेट, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, मेसी का पहला मैच इंग्लैंड के लिए। सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल और आज आराम के दिन रहे, सेमीफाइनल के इंतजार में बची चार टीमें जमकर तैयारियां कर रही हैं। पहला सेमीफाइनल कल 11 बजे फ्रांस वर्सेस स्पेन, फिर परसों वेंसडे मैच अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। दोनों सेमीफाइनल एमबीसी टीवी 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर लाइव दिखाए जाएंगे। नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच के बाद इंग्लैंड के बॉस टोमास टुखेल ने कहा कि वो अपनी टीम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। भाग्य हमारे साथ था, गॉट लकी, बहुत ढीले थे, बहुत तकनीकी मिस्टेक्स रहे। इस पर कप्तान हैरी केन ने कहा कि वो अपने कोच के इस फ्रस्ट्रेशन को पहचानता है, जानता है, क्योंकि हमें पता है कि हम इससे बेहतर खेल सकते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, वी स्टिल फील वी कैन इम्प्रूव। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना ये कोई साधारण मैच नहीं, एक ऐतिहासिक राइवलरी है। फीफा के प्रेसिडेंट यानी इन्फांटिनो ने कहा कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड कप में हिस्सा होना चाहिए। 64 टीम्स वर्ल्ड कप में हो सकती है, अभी 48 टीम्स है, मतलब और 16 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो पाएंगी। अगले वर्ल्ड कप में तीन होस्ट नेशंस हैं, मोरक्को, पोर्टुगल और स्पेन, पर क्योंकि ये वर्ल्ड कप की सेंचुरी सेलिब्रेशन है, यूरुग्वे में एक मैच, पाराग्वे में एक और अर्जेंटीना में एक मैच खेला जाएगा। अब कॉनमेबॉल मतलब साउथ अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से तीन से ज्यादा मैच की मांग की है, क्या होगा देखेंगे। फिलहाल इस वर्ल्ड कप को पूरा होने दीजिए, अभी बचे हैं दो मैच यानी दो सेमीफाइनल और एक मैच थर्ड प्लेस और द बिग फाइनल इस संडे को 11 बजे। सब कुछ एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले अप पर लाइव, एमबीसी रेडियो पर भी आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। इट्स द वर्ल्ड कप आफ्टर ऑल, चार साल बाद आता है, इसका मजा लेना जरूरी है। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए वंडरफुल वीक अहेड।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:48 और आप विनीता का साथ दे रही हैं। चलिए गेम हो जाए और यहाँ पर हमारे साथ गेम खेलने के लिए आ गया। देखो देखो वो आ गया। गुड मॉर्निंग विकास।
3: मैं वर्ल्ड कप के लिए रेडी हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड कप के लिए क्यों?
3: देखो ऐसा कि कल
2: मैच देखने के लिए
3: नहीं, कल सपोर्ट करना है तो आज क्या करें? आज थोड़ा सा भागते हैं, दौड़ते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड कप।
2: यू मीन टू से कि आज हम पूरा चक्कर लगाएंगे?
3: लेकिन कप तो किसी और की तरफ से मिलने वाला है ना।
2: हाँ, ये कप में दूध है। Yes, we're playing with Anchor Life. चले जी, आपको मौका मिल सकता है एक गुडी बैग जीतने का worth 500 रुपीज, जिसमें एक बॉक्स है Anchor Life 750 ग्राम का, एक बॉक्स ऑफ Anchor Life 300 ग्राम का और एक Anchor Life कप जिसमें आप ये दूध पीने वाले हैं, राइट? तो चलो यहाँ पर क्या है ना,

0: कि आपके लिए हम लेकर आए हैं एक छोटा सा गेम एंड उसके लिए मैं आपको बता दूं आपको मुझे देना होगा सही जवाब
1: प्रॉब्लम लेके लिपा गीत ले ली एंकर लाइव योर हार्ट एक्ट नाउ
0: Alright, so you have to act now क्योंकि मेरा सवाल आपके लिए जब हमारा स्किन धूप की यूवीपी रेज में एक्सपोज होता है जी हाँ जब हमारा स्किन धूप की यूवीपी रेज में एक्सपोज होता है तो हमारी बॉडी कौन से विटामिन नेचुरली प्रोड्यूस करता है ये आपको मुझे सही जवाब देना पड़ेगा ऑन 5491294 पूरे नाम और पते के साथ

0: Abby for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सूरज की बाहों में जी बिल्कुल सुबह की जो धूप होती है बहुत अच्छी होती है आपको भी मौका मिले लेकिन 12 बजे मत जाना वरना एकदम जल जाओगे तो ऐसे में क्या करना है आपको बस कोशिश करनी है कि आप ये जो 12 और 2 बजे की धूप है ना इससे थोड़ा सा आप बच के रहें और फिर उसके साथ यहाँ पर हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें एंड ऑफकोर्स हमारा जो आज का विनर है जानेंगे कौन होने वाला है तो ऐसा करते हैं यहाँ पर लकी ड्रॉ के लिए हम एकदम सेट है मैंने आपसे पूछा था जब हमारा स्किन धूप की यूवीबी रेज में एक्सपोज होता है तो हमारी बॉडी कौन से विटामिन जो है नेचुरली प्रोड्यूस करता है तो आपको मुझे जवाब देना था एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है एंड कोशिश करते करते हम लोग पहुँच ही गए यहाँ पर एक दो हमारे जो दोस्त हैं किसी ने कहा है कि कैल्शियम देता है किसी ने कहा विटामिन डी देता है

0: देता है. तो सही जवाब में यहाँ पर विटामिन डी ही देता है. तो हमारे विनर कौन है चलिए जानते हैं. तो ये है छूनाथ गजाधर और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो है विटामिन डी. तो मैं आपको बता दूं आपको क्या मिल रहा है. छूनाथ जी आपको मिल रहा है एक गुडी बैग विद 500 रुपीज जिसमें एनकालाइफ जो है आपको मिल रहा है एक बॉक्स 750 ग्राम्स का, एक है 300 ग्राम्स का, एक एनकालाइफ कप भी है. तो मैं आपको बताऊं दोस्तों एक छोटा सा सवाल. योर हार्ट वर्क्स फॉर यू एवरी सिंगल डे राइट. तो आज क्यों ना हम अपने हार्ट के लिए कुछ करें, क्योंकि अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत कुछ होता है भाई. अगर आपने एक ग्लास दूध ले लिया, एनकालाइफ इज गुड, ये एक न्यूट्रिशियस मिल्क है, स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है टू सपोर्ट अ बैलेंस लाइफ स्टाइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर योर हार्ट्स वेल बींग. तो आपको चाहिए कि आप अपने दिल के लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं ना, इतना सा राइट.
1: Problème les guerres, les baguettes, les allées. Les capaves, moi, les capaves, toi, les capaves, nous tous. Protège-tu les guerres, Audi, pour qu'ils disent, tu pas à risque un bon problème les guerres. Allô, enjoy to life avec Enke Life, parce qu'il s'abondit les Enke Life là, et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te bonne activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit les Enke Life, mais là, te prends soin de les guerres. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
2: Morning show. RM2
3: Radio Musty.
0: चलिए जी, तो यहाँ पर छूनाथ जी आपको बता दूं कि आपको ये गुडी बैग लेकर आना चाहिए, आपको लेने आना चाहिए एट MBC अपने ID कार्ड के साथ. डोंट फॉरगेट कि ID कार्ड ज़रूरी है. सुबह 9:30 और सवेरे 3:30 बजे के बीच वैसे भी हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको कॉल करने वाले हैं. दोस्तों हमारे जाने का टाइम हो गया है और यहाँ पर विकास के आने का टाइम हो गया है. तो मैं चलती हूँ, आपसे कल मिलूंगी मॉर्निंग 7. भूलिएगा नहीं, बाय बाय, टेक केयर.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा। नमस्कार।
1: नमस्कार और आदाब। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पटरी पर उतरी। इसके जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इलाकाई सतह पर यह मॉरिशस के लिए एक बड़ा कदम है क्योंकि अफ्रीका का ये प्रथम हवाई परिवहन रहा। अब से मॉरिशस की तरफ इथियोपियन एयरलाइंस की रोजाना एक उड़ान भरी जाएगी। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दूसरी बात, मुद्रास्फीति दर में धीमापन नजर आया है लेकिन परिवारों के लिए घर चलाना अभी तक मुश्किल है। स्कूल वैन के अच्छे संचालन और कार्यकुशलता के लिए ड्राइवर के साथ साथ एक हेल्पर का होना लाजमी है। मकसद वैन से उतरने और चढ़ने में बच्चों की हिफाजत करना है। इसके अलावा अगर बच्चों को सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकी मदद करनी चाहिए। इसके वास्ते नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी NLTA हेल्पर को इस काम के लिए एक ऑथराइजेशन कार्ड भी देती है। पोर्ट लुई थिएटर के पुनर्निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण से गुजर रहे हैं। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया ने परियोजना का जायजा लेने के लिए स्थल का दौरा किया। उन्होंने तसल्ली जताई कि जनता के मनोरंजन के वास्ते बहुत जल्द इस थिएटर को फिर से खोल दिया जाएगा। विदेश में बैंकॉक थाईलैंड में एक मशहूर पब में आग लगने से कम 27 लोग जान से गए हैं, 63 लोग जख्मी बताए जाते हैं। अभी एक जाँच शुरू की गई है ताकि इस हादसे की सही वजह के बारे में पता चल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Welcome to RM2.
4: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: लीजिए वर्किंग वीक शुरू और हम भी शुरू। अब गुड मॉर्निंग आप सभी को। 13 जुलाई मंडे का दिन, 9:07 और हम साथ साथ हैं हमेशा की तरह म्यूजिक के साथ जी मस्त मॉर्निंग शो। और वैसे आज की बात करें तो 13 जुलाई बहुत सारे गेम्स बहुत सारी मस्ती के साथ वेद आपके साथ जुड़ गई थी इन योर मॉर्निंग बीट। वहीं पर मैं देख रहा था एक फैक्ट, आज यानी कि 13 जुलाई को अरे साहब फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था यूरुग्वे में और ये हुआ था जुलाई 13 से 30 जुलाई 1930। सोचिए साहब ये जो फीफा है फुटबॉल का कब से चल रहा है, यानी कि आज के दिन अगर सोचे तो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था यूरुग्वे में। अमेजिंग। और जीत यूरुग्वे की हुई थी, डिफीट किया था अर्जेंटीना को 4-2 इन द फाइनल। लेकिन अब क्या होगा, अर्जेंटीना तो अभी भी है। इस बारी सिस्टम और माहौल थोड़ा सा अलग है, राइट? फैंस का सपोर्ट हो या फिर वो कमाल की फॉलोइंग, अब सब कुछ मिलता है यहाँ। ये संगीत का जहाँ गुड मॉर्निंग। चलिए साहब बहुत सारे गानों के साथ और बॉलीवुड की बात तो करेंगे, लेकिन आपकी हमारी बात करने वाले मौसम करेंगे बिल्कुल फिट एंड फाइन म्यूजिक के साथ सनशाइन।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हाँ, ये अच्छा होगा कि आज 13 जरूर है, लेकिन फ्राइडे 13 नहीं, मंडे का दिन। तो चलिए जान लेते हैं आज राशियां क्या कहती हैं।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musty.
2: चलो आप शुरुआत करते हैं with
3: Aries मेष राशि।
2: आज एनर्जी हाई रहने वाली हो, नए आइडियाज दिमाग में टिंग टिंग करके मतलब स्पीड से डाउनलोड होंगे। काम में जल्दी डिसीजंस लेने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए। फैमिली के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आपका मूड फ्रेश रहेगा। फाइनेंशियल मैटर्स में स्मार्ट प्लानिंग फायदेमंद रहने वाली है। अपनी पॉजिटिविटी को सबके साथ शेयर कीजिए। आज का मंत्र, हर नई शुरुआत में सबसे बड़ी ताकत होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस।
3: टॉरस वृषभ राशि।
2: राशि, आज पेशेंस ही आपकी असली पावर बनेगी। ऑफिस हो या घर, शांत रहकर हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे। हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और रूटीन मेंटेन कीजिए। किसी पुराने दोस्त से अच्छी खबर मिल सकती है। दिल की बात कहने का सही वक्त है। आज का मंत्र, मैं हर कदम पर विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ।
3: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आपके लिए कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली है। नए लोगों से मिलने और नेटवर्किंग के अच्छे योग हैं। छोटी सी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर मत कीजिए, ये बड़ा फायदा दे सकती है। अपनी क्रिएटिविटी को

0: खुलकर एक्सप्रेस कीजिए, हर चैलेंज को स्माइल के साथ एक्सेप्ट कीजिए। आज का मंत्र, मेरी सोची मेरी सबसे बड़ी पहचान है।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: आज इमोशंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग का बैलेंस जरूर रहेगा। फैमिली सपोर्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा। करियर में किसी इंपॉर्टेंट बात क्लैरिटी पर आराम से मिल सकती है, अब्सॉर्ब हो सकती है। अपने गोल्स को लेकर फोकस रहिए, खुद पर पूरा भरोसा बना के रखिए, नहीं तो आप डगमगा जाएंगे। भाई मैं हर परिस्थिति में मजबूत रह सकूं, इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार।
1: लियो सिंह राशि,
0: भाई आपकी लीडरशिप क्वालिटी सबको इम्प्रेस करेगी। किसी नए प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौका मिल सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखिए। फाइनेंशियल डिसीजंस में प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, आपकी पॉजिटिव एनर्जी लोगों को इंस्पायर करेगी। आज का मंत्र, मैं अपनी रोशनी से हर रास्ता भाई रोशन कर दूंगा।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज प्लानिंग और डिसिप्लिन आपको सक्सेस के करीब ले जाएगी। पेंडिंग काम पूरे करने का सही दिन है। हेल्थ और फिटनेस पर फोकस बना के रखिए, किसी अपने की सलाह का फायदा मिल सकता है। हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना ना भूलें। और आज का मंत्र, मेहनत और लगन से हर सपना सच होता है।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: तुला राशि, बैलेंस और हार्मनी आपकी पहचान बनेगी। रिलेशनशिप में मिठास बढ़ेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। करियर में नए आइडियाज अप्रिसिएशन दिलाएंगे। खुद के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना जरूरी है। आज का मंत्र, मैं हर दिन खुशी और संतुलन को चुनता हूँ।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आपकी डिटर्मिनेशन आज कमाल दिखाएगी। किसी मुश्किल या फिर आसानी के बीच में आप बैलेंस ढूंढ पाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, ठीक होगा। हर सिचुएशन से कुछ नए सीखने का मौका मिलेगा। और आज का मंत्र, मेरी हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज ऑप्टिमिज्म आपके लिए लकी जाम बनेगा। ट्रैवल या लर्निंग से जुड़ी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। काम में कंसिस्टेंसी बनाना बहुत जरूरी है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक का वक्त मिलेगा। हर नए दिन को एक्साइटमेंट के साथ वेलकम कीजिए। और आज का मंत्र, मैं हर मौके को अपनी तरक्की में बदलता हूँ।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज हार्ड वर्क का रिजल्ट नजर आता लगने लग गया है। करियर गोल्स पर फोकस रहना आपको आगे बढ़ाएगा। फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेबिलिटी का एहसास होगा। अपने एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल कीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ हर चैलेंज का सामना भी कीजिए। और आज का मंत्र, मेरी लगन मेरी सफलता की पहचान है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: भाई कुंभ राशि, आज इनोवेशन और फ्रेश थिंकिंग आपको अलग पहचान देगी। नए आइडियाज को एक्शन में लाने का सही समय है। किसी दोस्त या कलीग का सपोर्ट मिल सकता है। और दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस बनाकर रखना जरूरी। आज का मंत्र, मैं हर दिन नए सपने और नए हौसलों के साथ जीता हूँ।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। दिल की आवाज सुनना आपको सही डायरेक्शन का रास्ता दे सकता है। भाई डायरेक्शन और रास्ता भाई सही लोगों से पढ़ता रहे वास्ता। रिलेशनशिप में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अपने गोल्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए और छोटी खुशियों का भी पूरा आनंद लीजिए। आज का मंत्र, मैं अपनी हर सोच को सफलता में बदलने की क्षमता रखता हूँ।
2: Your daily horoscope.
3: RM2. Radio Musti.
4: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
5: Tak tak Bollywood.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसा म्यूजिक जहाँ पर चलता रहता है वहीं पर हम बात करते हैं लाइफस्टाइल मंत्रा की और बात करते हैं फोकस की। ऐसा हो रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप, हाँ उसने एक स्केड्यूल से बना दिया है, रात को देर तक उठना, मैचेस को फॉलो करना, उसके बाद अगले दिन फोकस लूज हो जाता है। नहीं भाई, गुड मॉर्निंग उन सभी ने जो अभी उबासियाँ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नींद आनी थोड़ी सी कम सी हो रही है। भाई अगर ऑफिस में एक सिंपल सी नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटका सकती है तो सुन लीजिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली

0: एक मिथ है। जब हम बार बार टास्क स्विच करते हैं तो दिमाग में टेंशन रेजिड्यू रह जाता है, यानी कि आपके दिमाग में पुरानी वाली जो प्रोसेस करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, वो उसका थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, जिसकी वजह से फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाते हैं। अगर फुटबॉल ने ऐसा कर दिया तो ब्रेक लीजिए ना, एक्स्ट्रा टाइम में क्यों जा रहे हो। इसलिए आज का स्मार्ट हैक है 25 मिनट सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक जहां पर थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया। बट न्यूरोसाइंस बताती है कि शॉर्ट फोकस, स्प्रिंट्स और रेगुलर ब्रेक्स ब्रेन को फ्रेश रखते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। सो आज का एक गोल्डन रूल ये भी है कि काम शुरू करते ही फोन को साइलेंट या फेस डाउन कर दीजिए। हर नोटिफिकेशन सिर्फ कुछ सेकेंड्स नहीं बल्कि आपके कॉन्सेंट्रेशन को काफी देर तक इम्पैक्ट कर सकता है। बस एक वक्त में एक ही काम, क्योंकि फोकस माइंड ही फास्टेस्ट माइंड होता है।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाके

0: मजेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगू, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं अबाउट वन डे आरजे। तो आपको बस यही करना है कि अपने कंफर्ट जोन में आराम से एक वीडियो बनाइए अपना, और अपनी आवाज़ की जो टोनालिटीज हैं, जो स्टाइल है, जो एनर्जी है, वो हम तक पहुंचाइए। राइट, आपको बताने के लिए हमने चला दिया एक प्रोमो, आपके लिए बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, साथ देते रहिए। यस, यू आर लिसनिंग टू आरएम2। सुनते रहो

0: So on day aaj ke liye, get ready, get set, and don't forget to send your video on 5251-6363 par. और क्या पता है कि अगली बार आप यहाँ पर बैठे हो और चला रहे हो मस्त गाने एंटरटेनिंग मॉरिशस
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: सुमेर आगे स्टूडियो उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। मुशरत में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। स्टैटिस्टिक्स मुशरत की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दूसरी बार मुद्रास्फीति दर में धीमापन नजर आया है, लेकिन परिवारों के लिए घर चलाना अभी तक मुश्किल है। मुशरत में करीब 20% नौजवान बेरोजगार हैं। बढ़ती महंगाई और पहली नौकरी के लिए मांगे जाने वाले तजुर्बे की वजह से बहुत से नौजवान विदेश जाना मुनासिब समझ रहे हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर भावी जागोनाथ के मुताबिक का आर्थिक वृद्धि लाना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए नौकरी की ज्यादा संभावनाएं पैदा की जा सकें। फ्रांसीसी दूतावास की पहल पर कल मनाए जाने वाले फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के सिलसिले में तिल्फे अमोका प्रोमेनाड में भव्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। खास पकवान, मिठाइयां, संगीत, नाच और दूसरे मनोरंजक पहलुओं के जरिए मुशरत और फ्रांस की दोस्ती को और गहरा किया गया। प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका में 5 हफ्ते पहले शुरू माइग्रेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत करीब 53,000 विदेशियों को वापस उनका मुल्क भेजा गया। ज्यादातर लोग मालावी, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के मुताबिक ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभियान अभी तक जारी है। सालों में गैर कानूनी अप्रवास के खिलाफ ये वहाँ की सबसे बड़ी क्रैकडाउन कार्रवाई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। मस्क्रूट सुरिनाम में 5 साल की 5 years old आयशा बीबी सोफिया मुदाबोकस, आयशा बीबी सोफिया मुदाबोकस जो सोफिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 10 बजे इनके वालिद साहब फादिल मुदाबोकस के घर मस्क्रूट सुरिनाम से उठाकर दफनाने के लिए सुरिनाम का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे 10 AM। बासाई रोड कथोबोन में 81 साल की 81 years old श्रीमती आनंती रामनोट, श्रीमती आनंती रामनोट पैदाशी नाम दोमा जुरानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे सतीश रामनोट के घर बासाई रोड कथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। परमिशन टू डे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गायत्री जी हमारे साथ दे रही हैं और साथ में आ गई हैं आरती जी भी। गुड गुड मॉर्निंग। बस कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद यूं ही आपको मिलता जाए, जिंदगी यूं ही खेलती जाए। और वहीं पर हमारे साथ नलनी भी जुड़ी हैं जो कहती हैं गुड मॉर्निंग, एंजॉय द सॉन्ग्स। और ऐसा लगता है जैसे ये जो फुटबॉल के मैचेस देखने के बाद ना थोड़ा सा लेजी फील करते हैं सुबह, नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं हो रही। हाँ, वो जो मैच है वो कंप्लीट हो जाता है एक से टाइम के बाद, लेकिन नींद क्या करें भाई। ऐसा आपको अगर लगता है कि आप पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन कितने प्रोडक्टिव, अगर आप ये सोचें तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे भाई। एक्सपर्ट्स की माने तो

दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना। भाई रिसर्च सजेस्ट करती है कि दिन की शुरुआत में सिर्फ तीन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क डिसाइड करना प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। जब प्रायोरिटीज को क्लियर रखते हैं तो डिसीजंस आपकी थकान को कम करती है और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट होती है। यानी कि आपको सोचना कि आज पूरे दिन करना क्या है, आपको पता टारगेट ये है, आपको अपने बारे में बताएं, आप कर ले।

0: सा लॉन है तो उसमें थोड़ा घूम फिर के आइए, देखिए कमाल हो जाएगा। नेचर के साथ ये छोटा सा ब्रेक मेंटल जो फटीग होता है ना उसको कम करता है और टेंशन को रिचार्ज करता है। तो बस आज का लाइफ स्टाइल मंत्र, बिजी मत बनिए, प्रायोरिटी पर फोकस कीजिए। जब हर दिन के 3 जरूरी काम पूरे होते हैं तभी छोटी जीत मिलकर बड़ी सक्सेस बनती है।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: अजी लड़की को सुबह क्या पहनना उसको ये नहीं पता और आपसे उनसे पूछना है कि उनको प्यार हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सही बात नहीं है। चलो पहले लड़की की मदद कर देते हैं, आपकी भी मदद कर देते हैं, विंटर का टाइम है।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हरकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: And yes, दोस्तों, winter season आ गया है और ठंड के साथ style का भी time आ गया है. तो ये कहना जरा हम easy करते हैं कि भाई ये जो आजकल के trendy winter fashion tips है, इसके बारे में कुछ आपको बता दें. सबसे पहला होगा layering is the key. जी हाँ, एक comfortable t-shirt या thermal के ऊपर sweater या hoodie और उसके ऊपर एक stylish jacket या coat. आजकल देख रही हूँ सारे लोग जो है ना कोट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. वैसे कोट तो मैं भी पहन के घूमती हूँ. कोट का क्या है ना कि मॉरिशस में इतनी सर्दी नहीं होती कि लोग कोट पहने, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि सर्दी सच में हो रही है, तो कोट जो है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है. इसे आप वार्म भी रहेंगे और ये फैशनेबल भी दिखता है. तो कोट जो है, चाहे आप साड़ी पहन रहे हो, चाहे आप कुर्ती पहन रहे हो, चाहे आप यू नो ऑफिस वेयर पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, उसके ऊपर अगर आपने कोट पहन लिया ना, तो ये आपका लुक एकदम चेंज कर देता है. सो मेक श्योर कम से कम आप 2 या 3 कोट ज़रूर खरीद के रखें. मुझे पता है कहेंगे कि भाई फिर क्या होगा. हाँ, अब एक ही कोट आप रोज रोज तो नहीं पहन सकते ना, हफ्ते में 3 बार तो चेंज कर ही सकते हैं. उसके बाद तो जैकेट भी हैं, उसके बाद तो क्या कहते हैं, बहुत सारी शॉल्स हैं. जैसे कि आप साड़ी पहन रहे हैं तो उस पर शॉल ले सकते हैं और उसे अपने कुर्ती के साथ भी ले सकते हैं. लेकिन हमारे जो जेंट्स हैं वो तो जैकेट भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर कोट पहनते हैं ना तो बड़े ही स्टाइलिश लगते हैं. सो मेक श्योर कि आप आज कोशिश करें कि कम से कम 2 जैकेट के साथ तो कम से कम 2 कोट उठा कर ले ही आए घर पे. इससे क्या होगा, आपका लुक फैशनेबल भी होगा और एलिगेंट भी होगा.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: अलग जगह जाने की सोच रही है? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

0: अच्छा बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं जहां पर पूछ रहे हैं कि वन डे हाँ जी ये होगा किसे, क्योंकि एवरीबडी इज एक्साइटेड. ऐसा है ना कि हर कोई आना चाहता है स्टूडियो में और बनना चाहता है एक आरजे, क्यों नहीं. वक्त मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर वीडियोस. नंबर आपको याद दिला दूं, 5251-6363 पर.
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका.
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस.
0: डोंट मिस इट.

No, there is another style of music. I like it. If you like it, do tell me about it. रे 10:50 सुना लीस जनरल मंडे का दिन शुरुआत वर्किंग वीक की 13 जुलाई ये ना भुलाएं कि अभी काम बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जोश कुछ ऐसा होना चाहिए कि पूरा गाना एकदम सेकंड में मिनट में फटाफट यूं ही डिलीवर हो जाए।

और यहाँ पर रमेश सिंह हमारे साथ दे रहे हैं पंजाब से, वो मैं कहता हूँ पापा जी मक्के की रोटी सरसों का साग और भाग मिलका भाग, नहीं बस वो राय मोड़ते तो मैंने बोल दिया। ज्योति शाह बनारे साथ दे रही है, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी। और वहीं पर हमारे साथ देने के लिए आ गए हैं, कहते हैं राजू फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, सभी दोस्तों को प्रणाम, विकास मेरा नाम एंड चलेगा 12 बजे तक मेरा काम।

0: अच्छा नमस्कार
1: नमस्कार आदाब। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मुर्शिद के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर सीव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पटरी पर उतरी। इसके जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इलाकाई सतह पर ये मुर्शिद के लिए एक बड़ा कदम है क्योंकि अफ्रीका का ये प्रथम हवाई परिवहन रहा। अब से मुर्शिद की तरफ इथियोपियन एयरलाइंस की रोजाना एक उड़ान भरी जाएगी। मुर्शिद में करीब 20% नौजवान बेरोजगार हैं। बढ़ती महंगाई और पहली नौकरी के लिए मांगे जाने वाले तजुर्बे की वजह से बहुत से नौजवान विदेश जाना मुनासिब समझ रहे हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर भाविश जगन्नाथ के मुताबिक आर्थिक वृद्धि लाना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए नौकरी की ज्यादा संभावनाएं पैदा की जा सकें। पोट्री थिएटर के पुनर्निर्माण कार्य अभी आखिरी चरण में से गुजर रहे हैं। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंडिया ने परियोजना का जायजा लेने के लिए स्थल का दौरा किया। उन्होंने तसल्ली जाहिर की कि जनता के मनोरंजन के लिए बहुत जल्द इस थिएटर को फिर से खोल दिया जाएगा। विदेश में बैंकॉक थाईलैंड में एक मशहूर पब में आग लगने से कम 27 लोग जान से गए हैं, 63 लोग जख्मी हुए हैं। अभी जांच जारी है ताकि इस हादसे की सही वजह के बारे में पता चल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। सिमेट्री रोड आमोगी में 77 साल की 77 यूज ओल्ड मोहतरमा फातमा बीबी बहादुर जो फातमा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दो बजे इनके घर सिमेट्री रोड आमोगी से उठाकर दफनाने के लिए आमोगी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv. La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Well, ladies and gentlemen, welcome back. And 11 से 12 के बीच में अपनी कहानी यूं ही चलने वाली है, फिल्मी अंदाज के अंदर. और मॉर्निंग में अगर स्टाइल होना तो कहानी ठीक चलती ही है. Ladies and gentlemen, welcome to the third hour. हम चाहते हैं कि आप रखें अपने हार्ट के अंदर म्यूजिक की पावर, और उसके बाद देखिए सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता ही है. वर्ल्ड कप की जहां बातें हो रही है, बी टाउन की खबरें लेकर यहां पर इस घंटे में शामिल, और वहीं पर हाउस होल्ड डेको टिप्स ये भी होगा यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा. बस बना लो हमें भी अपनी जिंदगी आने का एक छोटा सा किस्सा. RM2 सुनते रहो.

0: pizza à Goodlands cœur de ville.
1: Ah, my nose.
2: RM2 Radio Musty.
3: This was here on the blog from the movie Awara Pan 2 of Imran Hashmi. कितना अपनापन दिखाएंगे आवारापन में. यू नो कि स्पोर्ट्स की बात हो या फिर बॉलीवुड की बात हो या आपकी बात हो म्यूजिक की बात हो, RM2 का साथ हो.

0: मस्ती चल बात कर लेते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस की, क्योंकि वीकेंड की जब बात होती है तो मूवीज रिलीज होती हैं, राइट। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड में जहां नई नवेली ये रिलीज हुई धमाल 4, हाँ उसका दबदबा दिखा, वहीं पर आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा ने चौंकाने का काम किया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यशराज फिल्म्स की ये सातवीं फिल्म जो स्पाई यूनिवर्स से कनेक्टेड थी, बम्पर कमाई तो नहीं कर पाए, लेकिन इस वीकेंड में उसने 6.15 करोड़ की कमाई करते हुए अक्षय कुमार की मल्टी स्टार वेलकम टू द जंगल को धोबी पछाड़ दी है। इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा अब 31 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन पांचवें वीकेंड में गिने चुने शोज के बावजूद इसने 2 करोड़ का बिजनेस किया, तो फिर लगे रहो। अल्फा के रिलीज होते ही उमा कुरैशी की डू डाई डू का हाल बेहाल है। फिल्म में कुछ खास कमाल नहीं है, इसलिए अब गए बात अगर शाहिद कपूर की कॉकटेल 2, तो वो भी चारों खाने चित हो चुकी है। अब चौथे वीकेंड में ये फिल्म 49 लाख ही कमा पाई है। धमाल 4 अभी 65 करोड़, अल्फा 6.1 करोड़, अब सोचिए इतना पैसा लगाया लेकिन वापस रिटर्न कुछ खास नहीं आया। वहीं पर वेलकम टू द जंगल 4.5 करोड़, मैं वापस आऊंगा 2 करोड़, और ये हुआ वीकेंड में कमाई का फॉर्मूला। धमाल ने कमाल तो कर ही दिया क्योंकि अभी भी रिलीज हुई और कॉकटेल 49 लाख से बताया। चलिए देखते हैं आने वाले टाइम में पब्लिक किसको सपोर्ट करती है, बनती है फुल फिल्मी।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: क्या बोला ऐश कमीना? ऐश को ऐसे बोलने से आ गया पसीना।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: लेकिन साहब अगर कोशिश करें तो इंसान खुश रह सकता है। गा गा गा गाए जा, यूं ही मुस्कुराए जा। और गायत्री जी आगे उन्होंने कहा कि हाल कैसा है भाई? हाल तो ऐसा है कि बिल्कुल फिट एंड फाइन। वैसे रेडियो मस्ती सुन रहे हैं अभी और किशोरदा गाना सुनने जाती हैं। वैसे भारत से दो के बीच में आप जरूर अपने गानों की रिक्वेस्ट कर सकती हैं, क्यों नहीं। बट गायत्री जी, थैंक यू सो मच स्टिल हमेशा साथ देने के लिए। वहीं पर कहते हैं कि मैंने डाउनलोड कर लिया रेडियो मस्ती का ऐप। और ये कौन है? ये है नामदेव और ये है इंग्लैंड से। हेलो, गुड मॉर्निंग मॉरिशस से। हे विकास, थैंक यू सो मच इन गानों के लिए। एंड एक प्लीज़ अगर गाना हो पाए, यालेश हमारे साथ दे रहे हैं गाने की रिक्वेस्ट करते हुए। चलिए अच्छा है जब हम जानते हैं कि आपके साइड पर मूड और सिचुएशन कैसी है। वैसे तो जितनी हवा जितनी बारिश चल रही थी, लोगों को कपड़ों की बड़ी चिंता हो जाती है ना, अंदर सुखाना या फिर सोचना कि वो ठंडे ना रहें, ड्रायर में डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो नेचुरल है सब कुछ, वो बहुत कमाल है। थोड़ा सा वक्त गार्डन में बिताना, थोड़ी सी रोपाई सिंचाई करना, थोड़ा सा एक अगर आपके पास पेट है उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना, बच्चों के साथ अपना वक्त बिताना, फैमिली के साथ वक्त बिताना। हाँ, गैजेट स्क्रीन इनको तो जब आप बटन दबाओगे इनको ऑन ही पाओगे, इसलिए मूड को ऑन करो और फिर देखो साहब सब कुछ सही होने लग जाएगा। इट्स ऑल हैपनिंग राइट हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, कंटिन्यूस टिल 12।
1: यू आर लिसनिंग टू मस्ती मॉर्निंग्स।
2: आने करी ना किसी दिन आले प्यार मुंडिया तू।
1: स्टे ट्यून्ड, स्टे मस्ती, रेडियो मस्ती।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Saveurs réconfortantes, produits du quotidien et petits plaisirs à partager. Tout vous attend chez Winners. Vivez pleinement la saison avec encore plus de choix et toujours plus d'économies. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
3: On est tous Winners.
0: RM2 Radio Musti.

और हम कितने खुश नसीब कि आपका प्यार हमेशा हमें मिलता है 24/7। जीना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पर कह रहे हैं कि लविंग द सॉन्ग्स और हर दिन बहुत ही खुशमय हो। और वहीं पर एक प्यारा मैसेज तनुजा जी के लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द होल फैमिली। साथ में उनकी भाभी है प्रिया, अमित, इश्ना और केशनी की तरफ से, पेशे हाफिज से हैं, पूरी टीम की तरफ से भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेरा अकबर अली से. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार और आदाब. स्कूल वैन के अच्छे संचालन और कार्य कुशलता के वास्ते ड्राइवर के साथ साथ एक हेल्पर का होना लाजमी है. मकसद वैन से उतरने और चढ़ने में बच्चों की हिफाजत करना है. इसके अलावा अगर बच्चों को सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकी मदद करनी चाहिए. नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी NLTA

0: ये हेल्पर को इस काम के लिए एक ऑथराइजेशन कार्ड भी देती हैं। मुर्शस में करीब 20% नौजवान बेरोजगार हैं। बढ़ती महंगाई और पहली नौकरी के लिए मांगे जाने वाले तजुर्बे की वजह से बहुत से नौजवान विदेश जाना मुनासिब समझते हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर भावेश जगन्नाथ के मुताबिक आर्थिक वृद्धि लाना ज़रूरी है ताकि नौजवानों के लिए नौकरी की ज़्यादा संभावनाएँ पैदा की जा सकें और वो देश में ही रह सकें। फ्रांसीसी दूतावास की पहल पर कल मनाए जाने वाले फ्रांस राष्ट्र दिवस के सिलसिले में तेलफेमो का प्रोमेनाद में भव्य गतिविधि का आयोजन किया गया। खास पकवान, मिठाइयां, संगीत, नाच और दूसरे मनोरंजक पहलुओं के जरिए मॉरिशस और फ्रांस की दोस्ती को और गहरा किया गया। विदेश में बांग्लादेश में जोरदार बारिश की वजह से कम 51 लोगों की मौत हुई है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालिया दिनों में हुई बारिश की वजह से हज़ारों लोग बेघर भी हुए हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ भी उतर आई है और भूस्खलन भी पेश आए हैं, खासतौर पर राजधानी ढाका में। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। सिमेट्री रोड अमोही में 77 साल की 77 years old मोहतरमा फातमा बीबी बहादुर, मोहतरमा फातमा बीबी बहादुर जो फातमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दो बजे इनके घर सिमेट्री रोड अमोही से उठाकर दफनाने के लिए अमोही का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। एसकी रोड पाई में 72 साल की 72 years old श्रीमती देवंती हरकू, श्रीमती देवंती हरकू पैदाइशी नाम लुफ जो मैडम गौजिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी मंगल को 10:30 बजे, कल 10:30 बजे इनके बेटे महादेव हरकू के घर इसकी रोड पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्लियो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। फुलियार नगर बौलू बेलवी मुगल में 89 साल के 89 years old श्री पोताना पोलू जो लचमा हसम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुपहर तीन बजे इनके घर फुलियार नगर बौलू बेलवी मुगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाबोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। 12:08 हो चुके हैं और आप जुड़ गए हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, और मैं हूँ आपके साथ इस समय पूनम। बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि एक पुराना गाना बजे और आप कुछ पल के लिए पुराने दिनों में पहुंच जाएं? ऐसा हुआ है कि नहीं पहुंच पाते? बिल्कुल पहुंच पाते हैं। यही तो है रेट्रो रिदम का जादू। यही बातें हैं और मुस्कान भी वही है और दिल के एहसास भी इसी से जुड़ते हैं। सच बताऊं तो रेट्रो रिदम के गाने होते हैं डायरेक्टली दिल से। तो चलिए आज फिर से उन सुनहरे सफर को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम, आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम सिर्फ R&R रेडियो मस्ती पर। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: रेट्रो रिदम R&R रेडियो मस्ती।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे

0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वाले आज एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services.

0: रेट्रो रिदम। 12:19 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। क्या गाना था, क्या आवाज़ थी, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में आप सुन रहे थे प्यारा सा गाना छोड़ के तेरा प्यार का दामन, बहुत ही सुंदर। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे गाने की जिसने पूरा इतिहास रच दिया। आज की डेट में भी जापान में इस गाने को बहुत प्यार मिलता है और यहाँ जब जब ये गाना पूरे वर्ल्ड में चलता है मुझे तो लगता है सबके पैर थिरकते होंगे। इन्जॉय कीजिएगा ये गाने को, पर साथ में हम आपको ये कहेंगे आपकी कोई फेवरेट फरमाइश है, कोई ऐसा गाना जो आपने बहुत समय से नहीं सुना। और कहते हैं ना कि कई गाने होते हैं दिल पे डायरेक्ट ही लग जाते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना मुकेश जी की आवाज में।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 12:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। क्या टाइम था, क्या ज़माना रहा होगा। आपको याद है जो कैसेट का ज़माना, जहाँ पे पेंसिल डालकर कैसेट को रिवाइंड करना और फिर टेप फंस जाए तो उसे संभाल कर धीरे धीरे से निकालना, उसकी अपनी ही खुशी होती थी। और हम सबको बताते थे कि ये देखो ये अभी इसके अंदर यहाँ पर गाना होगा, यहाँ भी गाना होगा, पर हमें क्या पता क्या सिस्टम होता है क्या नहीं। पर वो ज़माना बहुत अच्छा था जहाँ पर सब लोग बहुत ही सिंपल और सादे होते थे। चलिए भाई, बहुत सारी बातें करेंगे हम एक एक करके। आज बहुत सारी पढ़तें खुलेंगे, जिस जिसको भी कोई याद ऐसी याद आए जो बहुत सी अलग सी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 5499-1294 पर। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजन रघुपत जी, जो कि लंदन से साथ दे रहे हैं और बस सिंपल से कह रहे हैं हाय सभी के लिए। तो भाई हेलो सर, हम तो आपके मैसेज का हमेशा इंतजार करते हैं, थैंक यू सो मच। निर्मला जी साथ दे रही हैं फ्लाक से और एक गाने की फरमाइश कर रही हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे जी। ज्योति शातो बनारस से आशनी रेखा सुरेखा AMD मधु फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। डैरन श्वेता रविश प्रशा लोवेशा अपादू फैमिली भी सबको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई गाने हो तो पुराने गाने, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ललिता जीतन जी भी साथ दे रही हैं और अपने सारे क्लिक्स को कह रही है बैठो रेट्रो रिदम प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि उनका और हमारा ज़माना सबका एक जैसा ही है ना, क्या बात है क्या बात है। वीना गंगाधर भी हैं नोबल फॉन्स से और अपने हबी देव जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे। यलेश जी भी साथ जुड़े हैं, आज आपकी लंच की प्लेट कहाँ है, आपने जो गाना बोला है बिल्कुल हम चलाएंगे, बाहर आएगी पर आपकी पहले प्लेट आनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। चली जी देव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ पैरिस से और उनके बॉस हैं मिस्टर जो ऑफ कोंगो माँ, जो कि उनके बॉस तो हैं बट बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो फ्रेंड के जैसे भी हैं, तो उनके लिए भी एक फरमाइश भेजी है, हम बिल्कुल चलाएंगे आप सबकी पसंद के लिए। तब तक आप सब इंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम 12:43 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और इतने सारे मैसेजेस, क्या बात है, थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप जुड़ गए अपने ही प्रोग्राम के साथ, क्योंकि ये टाइम जो है ना वह थोड़ा सा सुकून मांगता है और कुछ नहीं, और ये कहता है कि थोड़े से हमारी पसंद के गाने चला दो तो और बात ही क्या। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में प्लेलिस्ट नहीं हुआ करती थी, मतलब जो भी रेडियो पर गाना बज जाता था उसी का इंतज़ार किया जाता था और कहते थे अरे ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, चाहे उसका पता नहीं होता था किसी को, वही फेवरेट सॉन्ग बन जाता था क्योंकि गाने इतने अच्छे होते थे, मतलब सभी के दिल में छू जाते थे और आप सबको एहसास होता था कि हाँ ये गाने भाई हमारे लिए मेरे ऊपर ही फरमाए गए, और सब बन जाते थे हीरो या हीरोइन। और ज़माने के जो कपड़े होते थे वो भी कितने मतलब कहते हैं ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, ग्लिटर लगा होता था उसमें, चमक होती थी उसमें, तिल्ले सितारे होते थे। और सारी लेडीज़ कहती थी कि ये अगर जो इस एक्ट्रेस ने डाली हुई है ना कॉस्ट्यूम, ऐसा मेरे पास साड़ी हो तो क्या बात है, और सब लोग लग जाते थे उसको ढूंढने में और बनाने में। और पुराने जमाने में तो चलो भाई बहुत सारी बातें करेंगे, चलो दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। श्याम देवी चरण जी जुड़े हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं लंच को और साथ में कह रहे हैं प्लीज़ एक प्यारा सा गाना मेरे लिए चलाइएगा, और हम आपको कहते हैं हम खुद आपके लिए एक प्यारा सा गाना चलाने जाते हैं। बबीता जी जुड़ी हुई हैं इस समय और पूरे परिवार के साथ एक गाना सुनना चाहती हैं। उसके साथ में विश्वानी धूमन जी भी जुड़ चुकी हैं और कह रही हैं कि ये गाना मेरे पूरी फैमिली के लिए, और इंदिरा शारदा सहेली नीला प्रतिभा शोभा गीता गजाधर एंड सभी फैमिली के लिए चलाइएगा। साथ में हमारी एक और दोस्त हैं जो हमेशा हमारा साथ देती हैं, उनका नाम है फिया। फिया जी कह रही हैं कि प्लीज़ एक गाना ज़रूर चलाइएगा, बहुत ही प्यारे से रिक्वेस्ट होती है उनकी, तो हम बिल्कुल चलाएंगे आपके लिए भी। और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, फिर भी आप बोलते रहिए, मैसेजेस करते रहिए और आपको पता चलेगा कि हमने आज कितनी सारी बातें करी हैं। आप इंजॉय कीजिए आपका ये गाना
1: रेट्रो रिदम RM2 Radio Musti.

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2025 के गन्ने पेराई अभियान की शुरुआत के अवसर पर उम्निकेन की पहल पर आज सुबह एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और गन्ना उत्पादक व किसान एक साथ जुटे। सभी ने प्रार्थना, कृतज्ञता और आत्मचिंतन के इस विशेष क्षण में भाग लेते हुए कंपनी के एक शताब्दी लंबे इतिहास और उसके संघर्षों तथा उपलब्धियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह के बाद प्रतीकात्मक रूप से गन्ना की कटनी का अभियान का शुभारंभ किया गया। आपने ये खबर देखी होगी, कल प्लेजोंस हवाई अड्डे पर इथियोपियन एयरलाइन के विमान के आगमन के साथ मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई है। इससे पर्यटन, व्यापार और व्यापार आदान प्रदान के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये मॉरिशस की क्षेत्रीय स्थिति को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन अब अडिस अबेबा और प्लेजोंस के बीच दैनिक उड़ान सेवा शुरू करने की महत्वाकांक्षा रखती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रहे हैं, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती हैं। कार्यों के अगले सितंबर महीने तक चलने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कल रात रविवार एक बार में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 22 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लोकप्रिय चातुचक इलाके में स्थित बार के मंच के पास से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई। आग के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और धुएं ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में घबराए हुए लोग जान बचाने के लिए बाहर भागते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के कपड़ों में भी आग लगी हुई थी, जबकि वे लपटों से घिरे मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात की तुरंत बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान अधिकांश मृतक एक शौचालय में मिले, जहां वे आग से बचने के लिए शरण लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर।

0: Shok sa wacha suni. Macau Lin, 3 boutique Unionville, me Macau Lin, 3 boutique Unionville, me ki asi sal. Ki 81 years old ki shimati subama mutusami, shimati subama mutusami. Pedash nam Sabri aur jinhe Sinda ke naam se bozada jante the ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal subah 10:30 baje unke ghar Twabuchik Union Vale se uthakar antim sanskar ke liye Twabuchik ki shmshan bhoomi li jayegi. Cremation tomorrow at 10:30 AM. इसकी रोड पाई में 72 साल की 72 years old की श्रीमती देवंती अकू पैदा शाम लोफा जिन्हें मैडम गौजा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे महादेव अकू के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए किश्लोक शमशान भूमि ले जाएगी. कमीशन टुमोरो और 10:30 AM. सिमेट्री रोड अमोरी में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की फातमा बीबी बहादुर जिन्हें फातमा के नाम से भी ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज 2:00 PM उनके मकान अमोरी से उठाकर दफनाने के लिए अमोरी का ही कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल जुड़िया 2 PM. पुलियार नगर बौलू बेलवी मोगैल में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड की श्री पुताना पुलू जिन्हें लक्ष्मक ओसम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर बेलवी मोगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचेक शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबी इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: Retro Rhythm. RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:12 हो चुके हैं दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेट्रो रिदम के साथ, जहाँ पे पुराने गाने चलते हैं भाई, बड़े दिल और मोहब्बत से हम चलाते हैं आप सबके। पर कहते हैं ना, पहले ज़माने में सीन वाला मैसेज नहीं होता था, मतलब कि कोई फ़ोन नहीं होते थे, मैसेजेस नहीं होते थे, पर फिर सीन भी नहीं होता था, बस चिट्ठी जाती थी, कोई पढ़ता था, उसका जवाब आता था, और तब ऐसा एहसास होता था भाई मोहब्बत में सब्र नाम की भी कोई चीज़ होती है। पर हमारे यहाँ पे दोस्त इतने सारे हैं ना, वो सोचते हैं कि हम एक सेकेंड में सबके मैसेजेस भी पढ़ेंगे और सबके गाने भी चलाएंगे। बस सब्र रखो, थोड़ा थोड़ा सा हम सबके मैसेजेस पढ़ेंगे और सबके गाने भी चलाएंगे। तो एंजॉय कीजिए अपने गानों को। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है आंटी जी, जो कि जयंती जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और उनको कहना चाहती हैं, तुम मेरी दिल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मुझे दिल की कोई परवाह नहीं है, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। भाई क्या बात है, थैंक यू सो मच। इतना ज़्यादा प्यार अगर बहनों में हो जाए तो बात ही क्या। कल्याणी जी साथ जुड़ी हुई हैं और अपने पूरे परिवार के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं और सबको कहती हैं कि भाई जो दोपहर का टाइम ना, इंजॉय कर लो। सीता गीता भोला राम फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जगमनी जी भी साथ जुड़ी हुई हैं और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। सुरेखा रामधन फैमिली भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय और कह रही हैं, मैं अभी आई हूँ खेतों से। सुया जी और कह रही हैं, जब मैंने खेतों में पानी डाल रही थी, जब थोड़ा सा मैं सब्जियों को देख रही थी, तो मुझे एहसास हो रहा था दोपहर का टाइम है, भैया रेट्रो रिदम प्रोग्राम आने वाला होगा, तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड लाल दे बिहारी जी के लिए गाना चला दीजिए। बिल्कुल चलाने वाले हैं। वेदिता जी भी साथ हैं और एक प्यारा सा मैसेज और आया है फैजान खान जी की तरफ से और लिखते हैं, सभी के लिए चेहरे पे मुस्कान सजाए रखी है हमने, दिल के दर्द को भी छुपाए रखा है हमने, दुनिया हंस लेती है हमें देखकर, पर कितने आंसुओं को मुस्कुराहट के पीछे छुपाया रखा है हमने। फैजान खान, क्या बात है भाई, हमारे शायर मॉरिशस के। थैंक यू सो मच इतने प्यारे से मैसेजेस भेजने के लिए। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: गया।
1: कभी सोचा है
0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: रेट्रो रिदम।
1: याद है मीरा कुमारी जी का वो अंदाज, बड़ी सी बिंदी सितारों वाली साड़ी और चेहरे पर ऐसी सादगी कि आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए। कहते हैं ना, उनकी सादगी इतनी सुंदर थी, वो उनकी आंखें बहुत चमकती थी और वो जितनी सुंदर थी उतनी प्यारा बोलती भी थी। चाहे वो कोई डायलॉग बोलती थी या कोई कहते हैं कोई गज़ल बोलती थी, मतलब एहसास होता था कि डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी डर जाते थे कि ये कितना प्यारा बोल रही हैं। लगता ही नहीं था, वो लोग छोड़ देते थे, कई बार शूटिंग वहीं रुक जाती थी। वो कहते थे आप आगे सुनाइए। तो यही होता है, वो एरा ऐसा था और उनका ऑरा ऐसा था। भाई यही तो बात होती है, जब आप पुराने गानों के साथ जुड़ते हैं तो साथ में हम सोचते हैं थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको सुनाएं उस जमाने की। तो साथ में राज कपूर अगर साहब की बात देखी जाए तो उनकी जो छोटी सी टोपी होती थी या सिंपल सा उनका लुक होता था, पर उनकी जो आंखें होती थी, जो उनकी भौहें होती थी थोड़ी सी ऊपर होती थी, उनका स्टाइल ही कुछ अलग था। आज भी जो लोग ये पुरानी मूवीज़ को पसंद करते हैं, चाहे वो न्यू जनरेशन के लोग हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं उनके पुराने। कई बार कहते हैं कि अरे ये तो पुराने गाने हैं, पर जब वो मूवीज़ देखते हैं तो कहते हैं अरे वो ज़माना आप लोगों का बहुत बढ़िया रहा होगा। तो भाई इंजॉय कीजिए, मैं हूँ आपके साथ पूनम, रेट्रो रिदम आपके साथ है हर वक्त। इंजॉय करिए ये वाला गाना, बहुत ही प्यारा सा है, पाकिज़ा मूवी का, लता मंगेशकर की आवाज़ में और फिल्माया गया था मीना कुमारी जी के चेहरे के ऊपर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:36 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। अरे बहुत ही प्यारा, मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ हो और ऐसे तरीके से स्टाइल से उन्होंने गाया ना कि दिल करता है हाय उनको सुनते रहें। चलिए जी, 2-3 प्यारे प्यारे से मैसेज लेंगे, उसके बाद पहले हम बात करते चलते हैं कि भाई एक ऐसा भी टाइम आया था जहाँ पर बहुत सारी पुरानी मूवीज़ जो थी, मतलब थोड़ा सा चेंज होने लगा और उसके बाद एक ऐसा दौर आ गया जहाँ

0: यहाँ पर बात करें देवानंद से, चलते चलते बात आई राजेश खन्ना तक कि भैया उनके लंबे लंबे से कॉलर्स होते थे और बेल बॉटम होती थी, बड़ी बड़ी सी उनकी वो स्लीव्स होती थी और ऐसा लगता था कि स्टाइलिश मैन कहाँ से आ गया, मतलब फॉरेनर लगते थे वो। और उनकी पर्सनालिटी को देखते देखते फिर ये पर्सनालिटी किसने अडॉप्ट की, उन्होंने की भैया हमारे वो हैं जो एंग्री मैन की तरफ से भी जाने जाते हैं और उनका नाम है यस अमिताभ बच्चन। उनके लंबे स्टाइल और लंबे बाल भैया उन्होंने बहुत ही चेंज किया और उसके बाद देखो आज वो लेजेंड्स में आते हैं। तो ये बातें होती हैं कि अगर आप थोड़ी सी पर्सनालिटी चेंज करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, थोड़े से अपने कपड़ों का स्टाइल चेंज कर लेते हैं तो आपकी ओवरऑल लुक भी चेंज होती है और आपकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, मूवीज़ होती हैं, सब कुछ चेंज होती चली जाती हैं। तो देखिए उस ज़माने का भी एक गाना सुनते हैं, इन्जॉय कीजिए। जिनको भी अभी दिल कर रहा है ना, हमारे पास दो तीन मैसेजेस आए हैं कि भाई कोई रोमांटिक गाना चला दो मेरी वाइफ के लिए, तो भाई उन्हीं के लिए है जिन्होंने ये मैसेज भेजा है, उनके लिए स्पेशली।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti
3: Hello, I want to kill you.

0: Retro Rhythm.
1: एक बजकर 55 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, तो आज का रेट्रो रिदम तब यहीं तक था। उम्मीद है आपके पुराने गानों ने आपको थोड़ी सी ताकत तो दी होगी, थोड़ा सा पूरा दिन अभी और चलाना है भाई। तो ऐसे कहते हैं हम कि आप अपने पुराने गानों के साथ तो जुड़े रहिए, पर आपने जो मैसेजेस भेजे हैं हमार को, और हम चाहते हैं कि उन सब के लिए थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आएंगी, आपको साथ मिलेगा परी का। इन्जॉय कीजिएगा RM2 रेडियो मस्ती पे। ये लास्ट गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।
2: टक टक बॉलीवुड। रेडियो मस्ती।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2025 के गन्ना पड़ाई अभियान की शुरुआत के अवसर पर उम्निकेन की पहल पर आज सुबह एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अधिकारी कर्मचारी और गन्ना उत्पादक व किसान एक साथ जुटे। साथ सभी ने प्रार्थना, कृतज्ञता और आत्मचिंतन के इस विशेष क्षण में भाग लेते हुए कंपनी के एक शताब्दी लंबे इतिहास और उसके संघर्षों तथा उपलब्धियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह के बाद प्रतीकात्मक रूप से गन्ना की कटनी का अभियान का शुभारंभ किया गया। अब आपने ये खबर देखी होगी, कल प्लेजोंस हवाई अड्डे पर इथियोपियन एयरलाइन के विमान के आगमन के साथ मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई है। इससे पर्यटन, व्यापार और व्यापार आदान प्रदान के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अफ्रीकी महाद्वीप के विमानों की सबसे बड़े फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये मॉरिशस की क्षेत्रीय स्थिति को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रहे हैं, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती है। कार्यों के अगले सितंबर महीने तक चलने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व में एक और रात हवाई हमलों और सुरक्षा अलर्ट

0: सेक्टर के बीच गुजरी। ईरान, जॉर्डन और गल्फ खाड़ी के कई देश क्षेत्रीय सैन्य तनाव के केंद्र में रहे। ईरानी सेना ने अमरीका से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर हमले करने का दावा किया। ये कार्रवाई दक्षिण और पूर्वी ईरान में अमरीकी सैन्य अभियानों के बाद की गई। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, क्वैत, कतर, ओमान और जॉर्डन ने अपनी सुरक्षा एवं रक्षा व्यवस्थाओं को सक्रिय कर दिया या संभावित खतरों की जानकारी दी। वहीं सऊदी अरब ने रात भर प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाए रखी, लेकिन कई अरब देशों पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

सबसे पहले एक बार फिर हम लौट कर आ गए हैं आपको एंटरटेन करने ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती आफ्टर वीकेंड. इट्स टाइम टू वेलकम दिस ब्यूटीफुल मंडे 13th of July. उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए खास और स्पेशल है. चलिए दोस्तों, जैसे हम कहते हैं, इट्स अ न्यू वीक, नया हफ्ता शुरू हो रहा है. सो लेट्स कीप इट हैप्पी, लेट्स कीप इट पॉजिटिव. मैं ऊपर ही आपके साथ लेकर आए हैं आपका अपना बॉम्बे टॉकीज, कुछ गुड म्यूजिक आपके लिए, लेटेस्ट सॉन्ग्स और साथ में होंगे बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स. फरी का साथ टिल 4 PM ऑन रेडियो मस्ती. बॉर्डर 2 फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए, एंड साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों 2:24 हो गए हैं और जैसे हम कहते हैं एवरी डे इज खास एवरी डे इज स्पेशल लेकिन कुछ दिन एक्स्ट्रा स्पेशल होते हैं जैसे कि आज की तारीख 13th of July क्यों है स्पेशल बिकॉज आज एक स्पेशल लेडी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है सो तहे दिल से हमारी पूरी RM2 रेडियो मस्ती टीम विश करना चाहती है हमारी प्यारी सी रीना भाभी को अ वेरी हैप्पी बर्थडे बहुत सारी गुड विशेज एंड बहुत सारा प्यार एंड वी हैव दिस स्पेशल विशेज कमिंग अप आपके नाम

वेल वैसे हमारे इस शो में तो बस लेटेस्ट सॉन्ग्स चलते हैं, लेकिन स्पेशल लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल करना तो बनता है. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू रीना भाभी, इट्स योर बर्थडे आज एंड बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारा प्यार. चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसे ऐसे ही बनाए रखिएगा, हमेशा खुश रहिए आप. दिल में जो भी विशेज हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो आपकी पूरी हो जाए. और तहे दिल से हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं. दिस वन गोज आउट फॉर यू.

वेल आपका जन्मदिन है रीना भाभी, स्पेशल विशेस कमिंग फ्रॉम विशाल भैया, आपका प्यारा सा बेटा भविष्य, सभी विशेषा परिवार जो आपको विश कर रही हैं वे हैप्पी बर्थडे, द एंटायर टीम ऑफ किचन और हमारी पूरी RM2 रेडियो मस्ती टीम भी आपको विश कर रही है वे हैप्पी बर्थडे, गुड विशेस के साथ भेज रही हैं प्यार विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, हैव अ ग्रेट वन, और एक बार फिर तहे दिल से आपको हैप्पी वाला बर्थडे।

0: Neptune.
1: Radio Musti.
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
1: Radio Musti.
2: घर जाने

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: तो चलिए दोस्तों 2:40 संडे को सिनेमा घरों में दर्शकों की काफी भीड़ नजर आई और इसी के साथ सभी फिल्मों की कमाई में तेजी भी देखी गई। हालांकि थिएटर्स में मौजूद सभी फिल्मों में नई रिलीज धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कर कमाई की है और वहीं वेलकम टू दी जंगल सहित बाकी फिल्मों के कलेक्शन में भी थोड़ी सी तेजी नजर आई। चलिए यहाँ पर संडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आपको बताते हैं। और अजय देवगन स्टारर इंद्र कुमार डायरेक्टेड फिल्म धमाल 4 ने संडे को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तेजी के साथ छप्पड़ फाड़ कमाई की है। इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी कि संडे को 11,481 शोज में 28.50 करोड़ की नेट कमाई की है, जिसके बाद इसका भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 78 करोड़ पहुंच चुका है और कुल नेट कलेक्शन 65 करोड़ हो गया है। वहीं ओवरसीज में भी ये फिल्म तीसरे दिन 4 करोड़ कमा चुकी है और जिसके साथ इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 1400 तक पहुंच गया है यानी कि 14 करोड़ तक पहुंच गया है। और इससे दुनिया भर में फिल्म ने रिलीज के तीन दिनों में ही करीबन 92 करोड़ की कमाई कर डाली है यानी कि नियरिंग 100 करोड़ का जो उनका खाता है वो बिल्कुल ये पार करने वाली है। और बात हो रही है धमाल 4 की, जहां पर जो भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं कह रहे हैं इट्स अ फुल ऑन फैमिली एंटरटेनमेंट। और कुछ कॉमेडी फिल्में होती है जहां पर हम यही कहते हैं कि ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कॉमेडी फिल्में पसंद है तो इसे आप जाकर देखिए और देखने के बाद ये फिल्म कैसी लगती है हमसे जरूर शेयर करें ऑन 5499 1294। अभी तक मैंने तो इस फिल्म को नहीं देखा है लेकिन रिव्यूज आ रहे हैं, कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को ये फिल्म थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इट्स डूइंग अ गुड कलेक्शन एट द बॉक्स ऑफिस। उसी फिल्म का ये गाना जो आजकल हो रहा है वेरी पॉपुलर। चलिए, सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के लिए। मैं हूं परिया आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज एंड योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499 1294 पर।

0: 2 Radio Musti.
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, it's 2:53 and it's time to read out aapke messages, aapke dedications 5499-1294 par. Aur chaliye yahan par gaano ko pasand kar rahe hain. Thank you for your lovely message. Aur saath hi yahan par Jeevanti ji hamara saath de rahi hain. So gaana hoga aapke naam, next track specially aapke liye. Aur yahan par Vijaya ji, thank you for your goody good wishes. Yes, hamari pyari si Reena ji yahan par MBC mein hi hai aur hamesha hamare liye kuch special special karti rehti hai. So aaj unhe happy birthday kehna to banta tha. And thank you special wishes के लिए, आपकी विशेष हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे. थैंक यू सो मच. और चलिए यहाँ पर कहते हैं कि एक जिंदगी काफी कहाँ है जिंदगी को एंजॉय करने के लिए. तो और यलेश, इस वक्त आप अपना टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म गातो पीमा ब्रेड बटर एंड अपनी चाय कॉफी के साथ. सो एंजॉय योर टाइम, नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू एंड विशिंग यू अ लवली आफ्टरनून. सभी शाम परिवार ऑफ सुरिनाम, नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए. और कहते हैं अगला गाना, इसे हम डेडिकेट करना चाहते हैं फॉर हस्बैंड निलेश. साथ में है बेटा, आपकी सिस्टर आश्ती, आपके पेरेंट्स एंड टू फ्रेंड्स नंदिता किशन एंड करिश्मा देव की. फॉर ऑल बाबूलाल परिवार ऑफ लाकाबेन वाकवा एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम विश्ती, उनके लिए भेजा है प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. और चलिए यहाँ पर एक और स्पेशल विशेज आ रही हैं और कहते हैं गाना हो जाए फॉर डियर हस्बैंड एंड विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड यू अचीव द बेस्ट इन लाइफ. विनेश मोहिपत अपना बर्थडे सेलिब्रेट रही है और यहाँ पर आपका बर्थडे है विनेश, और आपके लिए स्पेशल विशेस दैट्स कमिंग फ्रॉम निशा और आपके प्रिंस युव और सभी परिवार जो आप तक पहुंचा रहे हैं अपना प्यार एंड स्पेशल विशेस. सो हैप्पी बर्थडे आपको भी ऑन योर स्पेशल स्पेशल दिन 13th of July. बहुत सारी गुड विशेस हमारी पूरी आर एम टू रेडियो मस्ती टीम की ओर से. और चलिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे. ये सभी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स. मैं हूं परी आपके साथ और कनेक्टेड है आप ऑन RM2 Radio Musti.
1: RM2
0: Radio Musti.
1: Feel the Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्षिता, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी का स्वागत है। पेंशन सुधार के विरोध में बने संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे अपनी आगे की रणनीति तय करने से पहले फाइनेंस बिल के प्रस्तुत होने का इंतजार करेंगे। आज सुबह आयोजित एक प्रेस वार्ता में ट्रेड यूनियन नेताओं ने राजधानी की सड़कों पर निकाली गई पेंशन सुधार विरोधी शांतिपूर्ण रैली को सफल बताया। उन्होंने 60 वर्ष की आयु से सभी के लिए 15,555 रुपए की सार्वभौमिक पेंशन लागू करने की मांग दोहराई। साथ ही उनका कहना है कि बड़े वित्तीय समूहों पर विशेष टैक्स लगाया जाए ताकि सार्वभौमिक पेंशन और उससे जुड़े अनुदानों को बहाल करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रही है, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती है। कार्यों के अगले सितम्बर महीने तक चलने का अनुमान है। और कल प्लिजोंस हवाई अड्डे पर इथियोपियन एयरलाइन के विमान के आगमन के साथ मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई। इससे पर्यटन व्यापार और व्यापार आदान प्रदान के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़े फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। देश के कई हिस्सों जिनमें राजधानी ढाका भी शामिल है, बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब तक हुई कुल मौतों में आधे से अधिक एक बड़े बाजार वाले जिले में दर्ज की गई है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रोहिंग्या शरणार्थी बस्ती स्थित है। पिछले सप्ताह

0: इसी जिले में बाढ़ का पानी स्कूल में घुस आने से कई छात्रों और एक शिक्षक की भी जान चली गई थी। और उधर दक्षिणी वियतनाम में एक द्वीप के निकट भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट के पलट जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नौका में 32 भारतीय पर्यटक और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। शनिवार को खराब समुद्री मौसम के दौरान ये स्पीड बोट होम बेरुत एनगुआ द्वीप से लगभग 400 मीटर की दूरी पर पलट गई। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला आपके ध्यान की धन्यवाद और नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies, Radio Musti.
4: Radio Musti.

सोहेल बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान फिल्मों के साथ साथ अपने लुक्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच अब उनका एक नया लुक फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। हाल ही में सलमान खान को मुंबई के बांद्रा स्थित एक डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वो एक काउ बॉय इंस्पायर्ड लुक में नजर आए और इसके साथ उनका स्टाइलिश अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। सलमान खान ने इस दौरान लाइट कलर की एक टी शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर कुछ बटन खुले थे और साथ ही उन्होंने एक डिस्ट्रेस लाइट ब्लू डेनिम जीन्स ग्रे कलर की पहनी हुई थी और उसके साथ एक काउबॉय हैट उन्होंने कंप्लीट किया अपना जो लुक है इसी स्टाइल के साथ। और इस लुक में उन्होंने ऐड किया एक ब्लैक लेदर बेल्ट, गोल्ड वॉच और ब्लैक शूज जो उनके लुक को काफी स्टाइलिश बना रहे थे। सलमान खान ने अपने इस लुक को और भी खास बनाते हुए सिल्वर चेन के साथ एक बड़ा सा स्टोन वाला पेंडेंट पहना और जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका ये नया स्टाइल फैंस को काफी पसंद आ रहा है और अब लोग सोच रहे हैं कि क्या ये नया लुक उनकी किसी नई फिल्म के लिए है या फिर ऐसे ही जो सलमान खान है वो एक नए लुक को ट्राई कर रहे हैं। अब इसके लिए तो लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा बिकॉज कब से इंतजार हो रहा है उनकी मच अवेटेड रिलीज मातृभूमि का, जो अभी तो रिलीज नहीं हो रही है। अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हुई है और ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, पोस्टपोन होते होते इट्स ऑलरेडी जुलाई और अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की है मेकर्स ने कि ये फिल्म कब रिलीज होगी। सो उनके फैंस सलमान खान को देखकर तो खुश हो गए लेकिन बड़े पर्दे पर उन्हें कब देख पाएंगे इसके लिए करना है थोड़ा सा इंतजार। चलिए दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती, कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए। That's in the magical voice of Arijit Singh. Unka ek beautiful mashup aap sabhi ke liye. Enjoy this one.

और चलिए दोस्तों आपको बता दें, रणबीर कपूर ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी चर्चाएं बटोरी है और ये तो हम जानते हैं कि वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। फिल्म रामायण में वो जल्द नजर आने वाले हैं। वहीं रणबीर कपूर ने अब 4 फ्लैट्स खरीदे हैं और ये चारों फ्लैट्स उन्होंने पुणे में खरीदे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर ने अपने 4 फ्लैट्स खरीदे हैं और उन्होंने ये प्लॉट पुणे में खरीदे हैं और उनके ये जो फ्लैट्स हैं उसकी एरिया करीबन 21,400 स्क्वायर मीटर के आसपास है और इसकी कीमत 3,31,70,000 के आसपास बताई जा रही है। और इस प्लॉट के लिए रणबीर कपूर ने 16,59,500 रुपीज़ स्टैम्प ड्यूटी भी भरी है। देखिए भाई, देखिए स्टार्स की क्या लाइफ है, यानी कि छोटी चीज़ें भी वो करते हैं या फिर बड़ी चीजें करते हैं, हर एक चीज की खबर तो आ ही जाती है। यहां पर उन्होंने स्टैंप ड्यूटी कितनी भरी है इसकी भी खबर बन गई है। और दूसरे फ्लैट की अगर बात करें तो वो 29,900 स्क्वायर मीटर एरिया में है और इसकी कीमत करीबन 4 करोड़ के आसपास है। तीसरे प्लॉट की जो एरिया है वो इट्स अराउंड 43,800 स्क्वायर मीटर और इसकी कीमत करीबन 7 करोड़ रुपए है। और चौथा जो प्लॉट एरिया है वो 89,000 स्क्वायर मीटर का है और इसकी कीमत 1,39,00,000 बताई जा रही है। और यहाँ पर देखिए, बाहर से हमें इशारा किया जा रहा है कि ज़्यादा बातें मत कर, यही होता है हमारे स्टूडियो में, यही होता है, हमें बात नहीं करने देते लेकिन हम बात करेंगे, हमारे स्टार्स की खबर आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें दैट रणबीर कपूर यहां पर 4 फ्लैट्स खरीद चुके हैं और जैसे हमने बताया कि कीमत काफ़ी ज़्यादा है, जहां पर 3 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़ और 1 करोड़ का फ्लैट उन्होंने खरीदा है। टोटल 4 जो फ्लैट्स हैं उन्होंने

खरीदे हैं, अब इनका वो क्या करने वाले हैं, क्या इसे वो रेंट पर देने वाले हैं या फिर इसका कुछ और यूज वो करेंगे, इसके लिए तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। लेकिन ये हम जानते हैं दादावी के लिए ही इज एंजॉयिंग द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, जहां पर क्यूट बेटी राहा ब्यूटीफुल वाइफ आलिया के साथ ही इज स्पेंडिंग ब्यूटीफुल टाइम। हमेशा उन्हें हम देखते रहते हैं हॉलीडेज एंजॉय करते हुए, और साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में भी एनिमल के बाद अब उनकी रामायण का इंतजार हो रहा है, तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी के लिए साथ दीजिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: पर अपने वीडियोस भेजिए
1: जी उनको लग रहा है कि हम बोल रहे हैं गाना गाओ गाना नहीं गाना है आपको अगर हमारी तरह आरजे बनना है माइक के पीछे यहां पर हम बहुत सारी मस्ती करते हैं लेकिन बात भी तो करते हैं तो जिस तरह से हम आज आरजे अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं अगर आप आरजे बनना चाहते हैं आप हमारी जगह लेना चाहते हैं एक दिन के लिए बैठना चाहते हैं हमारी सीट पे और बात करना चाहते हैं ऑडियंस से अगर ये आपको करना है तो आप अपना वीडियो जो है हम तक पहुंचाएं हम गाने की बात नहीं कर रहे हैं हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं
0: हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और आप बनेंगे वन डे आज डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर वीडियो 5251-6363 पर
1: कभी सोचा है
2: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक कॉन्फिडेंस एनर्जी और पर्सनालिटी
1: वीडियो हो सकता है हिंदी भोजपुरी तमिल तेलुगु गुजराती मराठी उर्दू या चाइनीज में
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July तो कैमरा ऑन कीजिए टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज आपका स्टाइल
1: और आपका चांस
2: डोंट मिस इट

0: FM 2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: वो नहीं आने वाले, आने वाले, आने वाले, वो बेवफा छलावटी, छलावटी, छलावटी।

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: And well friends, it's 3:55 and time for Pari to say goodbye. यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी कहती है कि one day RJ का concept it's very nice, लेकिन आप इतनी हिंदी नहीं बोलती है. कोई बात नहीं रोशनी जी, आपके messages आते हैं ना, यही हमारे लिए काफी है. And thank you for the love and thank you for always being so so so sweet. और आपके लिए हमेशा ही हम प्यार पहुँचाते रहेंगे. Have a wonderful wonderful Monday रोशनी. And अगला गाना specially dedicate करेंगे आपके नाम. Sending loads of love to you. ललिता जीतन कहती है पोर्टलूस से आ गई हूँ मैं घर वापस and listening to the songs dedicating गाना परिवार के नाम कुमारी गीता सरोज ज्ञान्ति वीना और उनके दो भाई हैं संजय एंड विजय सभी जीतन परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं सो गाना आपके नाम श्याम देवीचंद की ओर से गाना उनके फ्रेंड्स राजू रवीन सुखदेव रवि श्याम और सभी देवीचंद परिवार जो साथ दे रहे हैं पे वैसे सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन इतने प्यार से आपने मेरा यानी कि परी का साथ दिया ऑन रेडियो मस्ती इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय और मेरे बाद आ रही है गिनी शालेकर योर रफ्तार वाइफ सो उनका साथ दीजिए एंड हैव अ वंडरफुल मंडे अहेड कुछ प्यारे गाने कुछ स्पेशल सेगमेंट्स होने वाले हैं आपके लिए इन योर रफ्तार वाइब्स तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज जाते जाते ये ब्यूटीफुल गाना आप सभी के नाम फ्रॉम द फिल्म आवारापन 2 अ ब्यूटीफुल ट्रैक ब्यूटीफुल लिसनर्स के नाम इस स्वीट स्वीट सॉन्ग के साथ इट्स परी साइनिंग ऑफ

स्टूडियो की घड़ी में 4:09 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम. सो व्हाट्स अप माय ब्यूटीफुल पीपल, ऑल गुड नाउ. ऑफ कोर्स इट्स मंडे तो पूछना बनता है क्योंकि आफ्टर अ लवली वीकेंड आई नो यू गेट द मंडे ब्लूज. बहुत सारे लोग जो है अभी काम से निकलने के लिए ऑल सेट है बिकॉज यू हैव टू गेट बैक टू रश बैक होम. तो ऑल दोस हु आर गोइंग टू हिट द रोड, यू आर गोइंग टू ड्राइव या हो सकते हैं ऑलरेडी हिटिंग द रोड, ड्राइव केयरफुली और आराम से गाड़ी चलाना. बस यूं ही साथ देते रहना अनऑरेंटी रेडियो मस्ती, जहां पे आपको गुड गुड म्यूजिक के साथ एंटरटेनमेंट के साथ विल बी टेकिंग यू टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, टू द बॉलीवुड की दुनिया में एंड एज वेल सम ट्रैफिक अपडेट्स. वैसे भी इफ यू हैव सम लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स टू शेयर हमारे साथ, इट्स ऑन 5499-1294 पर.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

रजिंदर लवली वॉइस ऑफ सुनिधि चौहान एंड पीयूष मिश्रा आप लोगों के लिए चलिया हां जी टेकन फ्रॉम द मूवी टशन। बिल्कुल टशन तो बहुत हो गया जी और मंडे का मूड थोड़ा स्लो हो सकता है। मैं मानती हूँ कि मंडे ब्लूज तो हमेशा ऐसे ही होता है लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि हम लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक लवली बॉलीवुड गाने जो आपके दिन को आपके आफ्टरनून को बना देंगे सुपर एनर्जेटिक और फुल ऑन एंटरटेनिंग। तो चाहे आप ऑफिस में हो या निकल चुके हो घर पर हो या रोड ट्रिप एंजॉय कर रहे हो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और तैयार हो जाइए नॉनस्टॉप म्यूजिक मस्ती और फील गुड वाइब्स के लिए। जी हाँ दोस्तों बस यही बने रहे हमारे ऑरेंज रेडियो मस्ती पर क्योंकि अब शुरू हो चुका है बॉलीवुड का जबरदस्त म्यूजिकल सफर आप लोगों के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इट्स टाइम कि हम अनाउंस करें कि आज का लकी विनर कौन है। यस वी आर हैविंग अ गेम जो अभी हमारा एक गेम चल रहा है। हम बस चाहते हैं कि आप आराम से सुने ध्यान से सुने क्योंकि जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है सो आई गेस कि आपको जानना है कि कौन बना है आज का लकी विनर। पूछा गया है एक सवाल, जी हाँ एक बहुत ही आसान सा सवाल। एक गाना हमने सुनाया था आपको ये वाला गाना आशा भोसले और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाजों में और हमने पूछा था कि ये जो गाना है कौन सी मूवी से लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए कोई भी गलत जवाब नहीं मिले हमें और बस आपको बता दूं कि Fortunately, we just have only one lucky winner. जी हाँ दोस्तों सही जवाब है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और आज का लकी विनर है संचिता भंटुआ। She is from Vakwa Bantia. So congratulations to you, Sanchita ji. I just want to say congratulations to you. आज का लकी विनर है संचिता भंटुआ एंड शी इज फ्रॉम वाकवा बंटिया। जी हाँ सही जवाब है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो आपको मिल रहा है अ टिकट, यस अ टिकट टू वॉच लाइव इन कॉन्सर्ट अभिजीत भट्टाचार्य इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 25th जुलाई 2026 फ्रॉम 7:30 PM एट SVICC एट पाय। जी हाँ दोस्तों बाकी जो लोग टिकट खरीदना चाहेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम 850 rupees एंड अवेलेबल एट moticket.mu@rezo.utau as well। तो चलिए अगर आपको एक हॉटलाइन नंबर चाहिए तो हम देते हैं 4669999 4669999। सो संचिता जी कंग्रेचुलेशन टू यू, देयर विल बी समवन कॉलिंग यू फ्रॉम द एम्बेसी टू लेट यू नो हाउ यू गोना ग्रैब योर टिकट्स। कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग।

तो चलिए जी, टाइम बीटा चला जा रहा है, 4:48 हो चुके हैं। आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग एंड एंजॉयिंग ईच एंड एवरी ट्रैक जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन द रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, वैसे उम्मीद है कि आपका मंडे जो है शानदार जा रहा होगा। बिल्कुल जी, और वैसे मंडे को बोरिंग किसने बोला, मैं हूं ना गिनीश आपका साथ देने के लिए। और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन विच इज आवर एम टू रेडियो मस्ती, जहां हर बीट के साथ बढ़ता है एक्साइटमेंट। आज के शो में होंगे बॉलीवुड के लवली लवली गाने, चार बस्टर्स एवरग्रीन हिट्स, और वो ट्रैक जो दिल को भी टच करे और फीट को भी थोड़ा सा ग्रूव करने पर मजबूर करे। सो स्माइल कीजिए, रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए एक जबरदस्त म्यूजिकल आफ्टरनून। सो स्टे कनेक्टेड हमारे साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट अभी शुरू हुआ है और म्यूजिक कभी रुकने वाला नहीं है। सो हियर वी गो, those who are driving, drive carefully and the next one goes out to you.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: तो चलिए जी अपनी रफ्तार वाइब्स में हम आपको लेके जाएंगे ऑन अ स्पोर्ट्स राइड विद अरविंद जी. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू.
4: गुड आफ्टरनून. वैसे हमारे लिसनर सोच रहे होंगे कि इतने देर से क्यों आए अरविंद, क्यों आज वर्ल्ड कप की तरह ये भी आराम फरमा रहे हैं क्या?
3: वो नहीं, वो बॉल के पीछे भाग रहा था.
4: नहीं, नहीं. कम से कम कल और आज तो बॉल के पीछे कोई भागेगा नहीं. इट्स रेस्ट डे. दोनों दिन हमारे लिए रेस्ट डे नहीं, क्योंकि वी हैव टू टेल यू द इन्स एंड आउट्स ऑफ द फुटबॉल ऑफ वर्ल्ड कप एंड बाकी स्पोर्ट्स भी.

0: क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स भी खेले जा रहे हैं जस्ट टू टेल यू कि कल फ्रांस वर्सेस स्पेन ये 11 बजे और वेंसडे को इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना ये भी 11 बजे सैटरडे को थर्ड प्लेस मैच और ये संडे 19 जुलाई The final ये होगा 11 बजे इन पर जानकारियां आपको समय समय पर देते रहेंगे बाकी टीमें अभी तैयार हो रही हैं और we'll see क्या टैक्टिक लाने वाले हैं कल का जो मैच होगा फ्रांस स्पेन इनेजी कुछ भी हो सकता है इस मैच में फ्रांस की टीम ने अभी तक काफ़ी इम्प्रेस किया है लेकिन स्पेन इट्स ए साइलेंट विनर और ये टीम भी परेशान कर सकती है फ्रांस को It's not a mere coincidence कि अभी जो चार टीमें हैं in the semi-final ये लोग FIFA World Ranking में first, second, third और fourth position पे आते हैं So FIFA World Ranking ने साबित कर दिखाया कि the four best of the world they are facing each other ये सब कल होगा और why not एक दिन हम लोग Mauritius को भी World Cup में खेलते हुए देख हैं क्योंकि अब Infantino ने 64 team World Cup के लिए दरवाजा खोल दिया है अगली बार तो नहीं Perhaps in the years to come, जबकि अब 64 places होंगे, why not? Cape Verde, Curaçao जैसी टीमें आई जिनका population Mauritius से बहुत कम है, so we need to work on this. इसके लिए एक पूरा system बदलना है और एक पूरा नया ढांचा बनाना होगा. The mentality of people should change in terms of कि हाँ football खेलेंगे तो we can go very far, star बन सकेंगे. So, स्कूलों में भी एकोल दे फुट ये सब फिर से आ रहे हैं सो इट्स इन द मेकिंग आने वाले दिनों में वी कैन बी वन ऑफ देम चलिए क्रिकेट की बात कर लें और इट्स वेरी गुड न्यूज कि यू नो आईसीसी में अब मॉरिशस भी अफिलिएटेड हो गया है दैट्स अ बिग न्यूज क्योंकि बहुत कम देश इसमें अफिलिएट होते हैं और मॉरिशस जहां पर द बिग क्वेश्चन इज कि मॉरिशस इज ए कॉमनवेल्थ कंट्री और यहां पर अंग्रेजों ने राज किया जबकि अंग्रेजों ने इंडिया में क्रिकेट एस्टैब्लिश किया और मॉरिशस में क्यों नहीं दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन तो कोई बात नहीं आजकल क्रिकेट इज ऑन इन मॉरिशस चाहे वो वीमेन क्रिकेट हो चाहे वो लड़कों बच्चों के लिए हो या सीनियर टीम तो इन सब को देखकर मॉरिशस के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर और जो प्लान है मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन उसको देखकर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मॉरिशस को अफिलिएट किया है एंड दैट्स अ बिग न्यूज कल सुबह हम लोग प्रेसिडेंट जो है उनसे बात करेंगे इन पर ज्यादा जानकारियां आपको देंगे हाँ तो क्रिकेट में आज इंग्लैंड को हराया इंडिया ने इंडिया की लड़कियों ने दे मेड हिस्ट्री बोल्ड आउट इंग्लैंड टू विन हिस्टोरिक लॉर्ड्स टेस्ट बाय 270 रन्स पहली बार के लिए इस मैदान में हिस्टोरिक लॉर्ड्स मैदान में एक वुमेन क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया और इसमें भारतीय टीम दे वर एबल टू डू देयर बेस्ट एंड विन इट भाटिया 113 रन बना पाई थी दूसरे इनिंग्स में और इंडिया इंग्लैंड की टीम आज 270 रन से हार गई लेट्स सी व्हाट विल हैपन बैक टू फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज में भी ये खबर है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चेलिमेंस को साइन करना चाहता है चेलिमेंस जो लेस्टर सिटी में था चार सीजन फिर 2023 में एस्टन विला में आया अब एस्टन विला के इस खिलाड़ी यूरी चेलिमेंस को साइन करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड है यूनाइटेड अपने मिडफील्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है अभी एलियट एंडरसन तो चला गया वो मैनचेस्टर सिटी में जा रहा है मार्चियस फर्नांडेज भी टोटनहम हॉटस्पर में जा रहा है और अटलांटा के ब्राजील वर्ल्ड कप खिलाड़ी एडरसन को नहीं साइन कर पाया 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में चेल्सी का आंद्रे सांतोस आ गया लगभग मेडिकल कर रहे हैं 48 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग सो अब एक्सपीरियंस मिडफील्डर देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में देव गॉट को भी माइनू जो अभी तक इंग्लैंड के वर्ल्ड कप कैंपेन में नहीं खेला है तो चेलिमेंस जो जिसके कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज क्लोज है वो नेगोशिएशन कर सकता है 29 ईयर ओल्ड यूनाइटेड के रडार में था काफी समय तक तो कौन आएगा वर्ल्ड कप के बाद बहुत कुछ पता चलेगा दिस इज फॉर श्योर You know what? Golden Boot, ये लास्ट में और कल इसको हम विस्तार देंगे Golden Boot, it's like the one who, those who win, top scorer. एक Golden Boot था जिसने जूते किराए पर लिए थे He borrowed shoes, और उसको इनाम में Golden Boot नहीं दिया गया था राइफल दिया गया था बिकॉज वो इज शार्प शूटर कौन है वो कल सुबह आपको इस पर ज्यादा जानकारियां देंगे हमारे स्पेशल स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप मैगजीन में.
1: थैंक यू सो मच अरविंद.
0: वेलकम.
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट.

Welcome in the second hour of this beautiful show, Jihan Dosan. That's your Rough Tower Vibes, your filmy rights with me here, Ganesha, on our end to Radio Masti. Wishing all of you once again a very good afternoon. Monday ko boring rehne ka koi chance hi nahi hai ab na, kyunki aise khoobsurat gaane tarane lekar aaye hain aap logon ke liye. And just stay tuned on your number one radio station, and you are listening to Radio Masti. And वैसे खाना पीना तो हो गया है, चाय कॉफी तो भी हो गई होगी, अब बारी है म्यूजिक की. अगले घंटे तक बजेंगे बॉलीवुड के लवली लवली गाने, सुपर डुपर हिट गाने और वो मेलोडीज जो सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं आप लोगों के. तो स्माइल कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अगर आप ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हो. सो मंडे को बना दीजिए म्यूजिकल मंडे, और ये सफल होगा बिल्कुल फुल ऑन एंटरटेनमेंट, मस्ती और बॉलीवुड के रंगों से भरा हुआ. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, हम तो बस इतना कहेंगे ड्राइव केयरफुली मेरी जान, आराम से गाड़ी चलाना, मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग, एंड बस ऐसे ही जस्ट बी वेरी कॉशियस, एंड धीरे धीरे हौले हौले आप घर तो पहुंच जाएंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपके बहुत ही प्यारे से परिवार आपका इंतजार कर रहा है, एंड बस जस्ट बी कॉशियस, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना एंड अपने आप को भी. सो 5499124 पर यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस, 5499124, यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस. एंड जी हाँ, डू लेट मी नो हाउ योर मंडे आफ्टरनून इज गोइंग ऑन. एंड चलिए जी, ये अगला गाना खास कर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, एंड जस्ट टू लेट यू नो द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक, आर एन टू रेडियो मस्ती.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Un nouveau voyage commence pour Maurice. Avec Ethiopian Airlines, la route Maurice Addis Abeba ouvre l'accès à plus de 145 destinations à travers l'Afrique et le monde. Pour les affaires, les études, la famille ou l'envie de découvrir ailleurs, une nouvelle option s'offre à vous. Contactez votre agence de voyage pour organiser votre prochain départ avec Ethiopian Airlines.
3: RM2 Radio Musti.
1: Raftar Vibes. Filmy Rides.
3: RM2

दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए ऑन आवर एमटी रेडियो मसी एंड फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो स्पेशली आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मंडे आफ्टरनून को बना देते हैं थोड़ा और कलरफुल, थोड़ा और ब्राइट, जस्ट फॉर यू माई डियर। एंड इग्निशियस यहाँ तो माइक साथ देने के लिए, और आप सुन रहे हैं आवर एमटी रेडियो मसी, जहाँ हर गाना लेकर आते हैं एक नई स्माइल, स्पेशली ऑन योर लवली ब्यूटिफुल फेस। वैसे ऑफिस डेस्क हो या स्टेयरिंग व्हील हो, किचन हो या कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, हम तो बस इतना कहते हैं कि म्यूजिक सबको कनेक्ट कर लेता है। तो छोड़िए सारी टेंशन और एंजॉय कीजिए बॉलीवुड के कुछ पैपी पैपी वाले गाने, स्पेशली फॉर यू, सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि एंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप है और गाने बैक टू बैक। अगला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ उन तमाम सुनने वालों के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन टिकटॉक और ऑन ट्यूब रेडियो मस्ती द शूज लाइव देयर। तो चलिए जी साथ में, लेट्स चेक इट आउट योर डेडिकेशंस ऑन 5499124 पर। एंड वी हैव Natasha जो हमारा साथ दे रही है, एंड विशिंग यू अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हे स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच राधा जी फ्रॉम कनाडा। हे, अगला गाना स्पेशली फॉर यू, आपके परिवार वालों के लिए जो कनाडा में है, मॉरिशस में है, सारे आरएमटी लिसनर्स के नाम, थैंक यू सो मच संचिता बटुआ। हे, थैंक यू सो सो मच, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एज वेल। हे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, बिलेटेड बर्थडे, थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, अगला गाना जो है आपके लिए रागिनी जी जो साथ दे रही है, दैट्स अ स्वीट टू हैव यू ऑन बोर्ड माय डियर, सो हियर वी गो, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू विशाल द बस ड्राइवर। कैसे हो आप? ये अगला गाना आपके लिए, यू आर मूविंग फ्रॉम फ्लैग टू गुडलैंड, सो ड्राइव केयरफुली एंड स्वीट लवली डार्लिंग। ओहो मेरी जान, क्या बात है। सो वी डू हैव डारन श्वेता रविश प्रशल अविशा पैडू फैमिलीज जो साथ दे रहे हैं, ये अगला गाना खासकर आपके नाम। सीता गीता बलोराम फ्रॉम शैतो बिनारेस, नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू। एंड विनय ये बोलते हैं आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर वाइफ विमला के लिए। गुरंग जी द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू। गियाना, ये अगला गाना स्पेशली आपके नाम भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे। योहान, ये अगला गाना फॉर यू एंड प्यारी है जीतन जी, सिस अग्निशा दास ललिता जीतन फ्रॉम लावांचा कुकिंग एंड लिसनिंग, माइंड ब्लोइंग गाने चल रही है, थैंक यू सो सो मच। एंड ऑफकोर्स वी डू हैव शनेश, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माई स्वीट हार्ट, एंड ऑल दोस हु आर वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक आर एम टू रेडियो मस्ती। Let me know, कहां से साथ दे रहे हो? And what's up? What are you cooking tonight?

0: à Goodlands, cœur de ville.
1: Ah, my nose.
2: RM2.
3: Radio Musty.

0: Tune.
1: Traffic update.
2: The Chalice Check Your Time Studio ki gari mein 5:34 minute ho chuke hain aur filhal ke liye here some latest traffic update on this lovely afternoon aap logon ke liye Monday afternoon ke liye. तो चलिए दोस्तों टाइम हो गया है लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट का और अगर आप इस वक्त रोड पर हैं तो ध्यान से सुनिए पोटली से नॉर्थ और साउथ की तरफ निकलने वाले ड्राइवर्स के लिए पीक आवर शुरू हो चुका है और मेजर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है अगर पॉसिबल हो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम लेकर आप ज़रूर निकल जाइए और रिजवी से फिनिक्स तक ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गया है इसलिए पेशेंस के साथ ड्राइव कीजिए और फिनिक्स से लेकर साउथ की तरफ भी ट्रैफिक स्लो है लेकिन गाड़ियां स्टेडिली मूव कर रही हैं और कैथरबोन और रोजिल की बात अगर करें तो हैवी कंजेशन ऑलवेज पीक टाइम ट्रैफिक की वजह से रोड्स काफ़ी बिजी हैं और वैसे ही हमेशा स्लो ट्रैफिक होता ही है वहां पर और अगर आप वेदर रोड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी ट्रैफिक स्लो मूविंग है और इसलिए जल्दी की वजह सेफ्टी सेफली आप ड्राइव कर लीजिए अच्छी खबर ये है कि अभी तक किसी मेजर एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और उम्मीद करते हैं कि नहीं मिलेगी तो चलिए इसी तरह सेफ ड्राइविंग कंटिन्यू रखिए और छोटी सी सेफ्टी रिमाइंडर आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती सीट बेल्ट हमेशा लगाइए मोबाइल फोन से दूर रहिए इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल कीजिए और लेन डिसिप्लिन मेंटेन रखिए थोड़ा सा पेशेंस आपकी जर्नी को सेफ और स्ट्रेस फ्री भी बना सकते हैं और बिल्कुल हम हैं गिनिशा जो साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती सो ड्राइव सेफ स्माइल करते रखिए और हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक से एक बरकर लेटेस्ट से लेटेस्ट गाने आप लोगों के लिए तो चलिए रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए एंड एंजॉय कीजिए द नेक्स्ट वन
0: RM2 रेडियो मस्ती

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: 5:45 हो चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. टू ऑल दोस हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक और इनटू रेडियो मस्ती. तो चलिए जी, फैशन टिप्स मैन ऑफिस वेयर फॉर विंटर, क्या ख्याल है आपका? सो हेलो माय लवली जेंटलमैन, सजेस्ट दे रहे हैं. सो जेंटलमैन जी, विंटर सीजन आ गया है और ऑफिस लुक को स्टाइलिश और स्मार्ट बनाना है, तो ये रहे आज के क्विक फैशन टिप्स आप लोगों के लिए. जी हाँ दोस्तों, टिप नंबर वन, एक वेल फिटेड ब्लेजर या स्मार्ट जैकेट जरूर रखे. नेवी ब्लू, चॉकल ग्रे या ब्लैक कलर हर ऑफिस आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच करते हैं. और नंबर टू, लेयरिंग इज द की. सो एक क्रिस्प जो शर्ट है उसके ऊपर लाइट वेट स्वेटर या वी नेक पुलोवर पहन लीजिए, ये आपको वार्म भी रखेगा और प्रोफेशनल लुक भी जरूर देगा. और टिप नंबर थ्री, एंड चिनोस या टेलर ट्राउजर्स जो है चूज कीजिए. डार्क शेड्स जैसे नेवी ब्लैक या डार्क ग्रे विंटर के लिए परफेक्ट होता है. और नंबर फोर, अपने लेदर शूज को क्लीन और पॉलिश रखे. स्मार्ट शूज आपके पूरे ऑफिस लुक को इंस्टेंट अपग्रेड कर देते हैं. सो वेल जी, फॉलो करते रहने हैं एवरी आफ्टरनून. डू फॉलो अस 7:40 से लेकर 45 तक. वी डू ब्रिंग योर फैशन टिप्स एवरी आफ्टरनून ऑन रेडियो मस्ती.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: pizza à Goodlands, cœur de ville.
1: Ah, my nose.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: This is.
4: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन ऑल रन टू रेडियो मस्ती। बट फिलहाल के लिए चेक योर टाइम, 5:55 हो चुके हैं। थोड़ी देर में हम भरेंगे 6 की समाचारों की और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन ऑल रन टू रेडियो मस्ती विद मी किनेशा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून्ड।

0: ये शाम के ठीक 6 बजे हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़
0: तेरह जुलाई सोमवार का दिन इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ओमनिकिन में 2026 की गन्ना कटाई अभियान की शुरुआत अंतर धार्मिक प्रार्थनाओं से की गई। इस वर्ष ग्रुप अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और बदलती चीनी उद्योग की चुनौतियों का सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। रिविया जोंपा बाजार परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में। राज्यसभा में इस मामले पर जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि वर्ष 2003 में दिए गए करीब 51 मिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के बदले 20 साल बाद 580 मिलियन रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ा। प्लेटफॉर्म को मैसेजिकल फाइनेंस बिल पेश होने का इंतजार कर रहा है। संगठन का कहना है कि इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही 8 वर्ष की आयु से 15,555 रुपए की पेंशन की मांग की एक बार फिर दोहराई गई। अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। उधर वियतनाम के एक द्वीप के पास एक पर्यटक स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। ओमनिकेन में आज से 2026 की गन्ना कटाई अभियान की शुरुआत हो गई। एक अंतर धार्मिक प्रार्थना के साथ शुरू हुए इस अभियान का इस वर्ष विशेष महत्व है क्योंकि ओमनिकेन ग्रुप अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। बीते सफर को याद करते हुए ग्रुप ने बदलते चीनी उद्योग की चुनौतियों का सामना करने और भविष्य की ओर आगे बढ़ने का संकल्प भी दोहराया। साहू की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
2: प्रार्थना कर जुटना और आशीष प्राप्त करना, एक अंतर धार्मिक समारोह के जरिए ओमनिकेन ने औपचारिक रूप से 2026 की कटनी की शुरुआत की। ये एक प्रतीकात्मक समारोह रहा, साथ में इसलिए भी क्योंकि 1926 में स्थापित ग्रुप इस साल अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर रहा है। एक सदी बीती जिसके दौरान ओमनिकेन मॉरिशन गन्ना उद्योग के बगल में विकसित होता गया। धीरे धीरे इसने अपनी गतिविधियां डायवर्सिफाई की और साथ में ईख के गन्ने को अपने विकास के केंद्र में रखा। घोषित परियोजनाओं में लिक्विड शक्कर उत्पादन की एक इकाई कायम करने की बात भी शामिल है। ओमनिकेन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाक जुनियाविल ने कहा,
3: Sommes en train d'installer dans la raffinerie maintenant une unité qui pourra produire du sucre liquide.
2: अभी रिफाइनरी में एक इकाई कायम कर रही है जो लिक्विड शक्कर पैदावार कर सकेगी और इससे ये लाभ होगा कि इससे रिफाइनरी की क्षमता प्रभावित नहीं होगी, उल्टा इसकी बदौलत अभी की तुलना में ज्यादा निर्यात कर सकेंगे। 100 वर्ष बहुत सुंदर सफर है, टिके रहने का प्रतीक है और एक ऐसी कंपनी है जो नवाचार लाती रही है, ऐसा करना जानती भी है, समय के साथ अपने आप को ढालती रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है बेहतर बुनियाद हो अगले 100 वर्षों के लिए। सरकार के लिए एक मजबूत गन्ना उद्योग का बना रहना एक अहम चुनौती बनी हुई है, चाहे अर्थव्यवस्था के लिए हो कि नौकरी, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर हो। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुले ने कहा,
4: Nous sommes innovants, nous sommes dans le maillon, nous sommes ce travailleur, artisan, laboureur, les planteurs, okay? Celui qui gère l'entreprise, les administrateurs. Donc c'est un maillon très fort. Et aujourd'hui, le planteur peut gagner premier 60 tonnes de sucre, 35 000 roupies la tonne. OK? Et nous pouvons donner beaucoup de sucre.
2: इस कटनी की शुरुआत से ओमनिकेन के इतिहास में एक नया अध्याय खुला है जो अपने अस्तित्व की दूसरी सदी आरंभ कर रही है। वो बदलाव का संकल्प जारी रख रहा है और साथ में देश के विकास में अपना योगदान भी बढ़ा रहा है।
0: प्लेटफॉर्म को में सेंजिकाल के प्रतिनिधियों ने आम हड़ताल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि उनका कहना है कि वे पहले फाइनेंस बिल पेश होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर अपनी अंतिम फैसला लेंगे। आज आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में संगठन के प्रतिनिधियों ने पेंशन सुधार के विरोध में पोर्ट लुइस में निकाले गए शांतिपूर्ण मार्च को सफल बताया। उन्होंने 60 वर्ष की आयु से 15,555 रुपए पेंशन की मांग दोहराई, साथ ही 1,00,000 रुपए से अधिक आय वालों पर टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया ताकि पेंशन और अन्य सब्सिडी को बनाए रखा जा सके। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर यशरा मिश्रा का विवरण।
2: प्लेटफॉर्म कुमार सहजीकर के प्रमुख वक्ताओं ने राजधानी की सड़कों पर आयोजित मार्च के बाद अपने भावी कदमों का उल्लेख किया। नरेंद्र नाथ गोपी ने कहा, सरकार द्वारा प्रस्तुत फाइनेंस बिल में बजट भाषण में घोषित कदमों को अमल में लाए जाने का प्रावधान है। फाइनेंस बिल की प्रस्तुतीकरण का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने काम हड़ताल के लिए वोट डाला। उन्होंने फाइनेंस बिल के पारित किए जाने के दौरान नेशनल प्रोविडेंट पेंशन फंड के उन्मूलन का प्रस्ताव रखा। राधा कृष्णा साध्य ने कहा,
5: cause réforme dans sa globalité. Et ça même gouvernement qui dit que la démocratie dit qu'on ne peut pas respirer. Mais quand un mouvement syndical, comme un partenaire social, le dimanche pour être convoqué dans une réunion et quand nous cause freedom of information, nous avons un accès et que l'information nous décide ensemble.
2: आबादी बदलाव और नौजवानों तथा भावी पीढ़ियों पर बोझ से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये कहा गया। रियाज चतु ने 1,00,000 रुपए से अधिक की आय प्राप्त करने वालों के लिए एक नए प्रकार के टैक्स का प्रस्ताव रखा है।
6: Je peux payer 0,5% l'aux autres income tax, ça veut dire comme une separate ban, qui je peux retourner ban government subsidy. Moi, parce que je pense que vous moi. Je gagne le diri, la farine, le gaz, je retourne parce que moralement, je ne pas mérité.
2: Manch ke anusar, pension ki financing, vriddhi ka paksh lete hue 22.5% ko corporate tax को लागू करने से गुजरती है। साथ में विदेशी कामगारों के वित्तीय मुनाफे से फायदा उठाना चाहिए और ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे नौजवानों को देश में ही रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
0: रुपया चौंपा बाजार का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय सभा की पिछली बैठक में मंत्री रंजीव उचित ने इस मामले पर जानकारी दी। वर्ष 2003 में करीब 51 मिलियन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन 20 साल बाद उसी मामले में 580 मिलियन रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ा। इस विषय पर सवाल उठाने वाले चुनाव क्षेत्र के सांसद संदीप प्रया का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह शुरुआत में तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट था। एमर्शस से जुड़े एक मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई हुई। एफसीसी ने एमर्शस के पूर्व जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर सतो हाजी अब्दुल्ला पर वर्ष 2020 में कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए 3.6 मिलियन रुपए लेने का आरोप लगाया। आयोग का कहना है कि ये कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान नहीं की गई थी। आज दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत इस मामले में 27 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। मॉरिशस के लिए अफ्रीका दुनिया की ओर एक नया द्वार खुल गया है। इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर शिवसागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंची। इसके साथ ही मॉरिशस की एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क व्यवस्था और मजबूत हुई है, जिससे पर्यटन, व्यापार और व्यापारिक आदान प्रदान के नए अवसर खुलेंगे। इस पर

0: सैल्यूट के साथ इसका स्वागत किया गया। पहली उड़ान के तहत 148 यात्री करीब 5.5 घंटे का फासला तय करते हुए मॉरिशस पहुंचे। उच्च स्तर पर ये परियोजना साकार हुई। असल में 2025 के फरवरी महीने में इथियोपिया में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इथियोपियन एयरलाइंस के ग्रुप CEO मेस्विन तैशो के साथ इस विमानन संपर्क का उल्लेख किया था। महाद्वीप के लिए सबसे अहम खेप यानी को 170 विमानों का इस्तेमाल और 30 से अधिक के ऑर्डर दिए गए। इथियोपियन एयरलाइंस अपने एडिस अबेबा के हब यानी बोले आधुनिकतम हवाई अड्डे के जरिए 165 गंतव्यों के लिए उड़ान निर्धारित करता है। इस नए हवाई मार्ग से मॉरिशस को अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। पर्यटन मंत्री ऋषभ जीवाल ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि इथियोपियन एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनी वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस है मॉरिशस के लिए उड़ान भर रही है। हमारे विचार से पूर्वी अफ्रीका और अन्य इलाकों के लिए अहम है। अमेरिका के लिए इसके साथ समझौता बातचीत की जाएगी ताकि अमेरिकी पर्यटक भी मिले। पहले तो कंपनी मॉरिशस की ओर 3 साप्ताहिक उड़ान भरेगी, बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन।
1: Et me penser que c'est de bonne augure qu'ils nous gagnent un grand aircraft comme ça, une grande compagnie comme ça.
0: इथियोपिया के विदेशी मामलों के मंत्री हदेरा अदमासु ने कहा, एक दशक से अधिक समय से इसकी कोशिश की जा रही थी। करीब 10 वर्षों की समझौता बातचीत, आखिरकार ये साकार हुआ। मॉरिशस अहम पर्यटन गंतव्यों में से एक है।
2: मॉरिशस is one of the the great destinations of tourism.
0: Ethiopian Airlines ke group chief commercial officer Lema Yadecha ne kaha, इथियोपियन एयरलाइंस की कड़ी में केवल मॉरिशस की ही कमी थी। अब मिशन पूरा हुआ, मॉरिशस को इथियोपियन एयरलाइंस के नक्शे पर रखा गया है। सभी गंतव्यों के लिए जिस तरह करते हैं निवेश करेंगे ताकि लोगों के बीच संपर्क हो सके, ताकि मॉरिशस और अन्यत्र से लोग इथियोपिया में आकर निवेश कर सकें और पर्यटकों को अफ्रीका तथा अन्यत्र से यहां ला सकें।
3: इन्वेस्ट इन इथियोपिया एंड बियॉन्ड एंड आल्सो वुड लाइक टू ब्रिंग टूरिस्ट्स फ्रॉम अफ्रीका एंड बियॉन्ड टू मॉरिशस।
0: इस नए हवाई संपर्क के साथ इथियोपियन एयरलाइंस और आगे जाने का इरादा रखते हैं। वो अब से मॉरिशस के लिए दैनिक उड़ान भरने की इच्छा रखती है और आने वाले दिनों में इस सिलसिले में मॉरिशन अधिकारियों के एक मांग भेजने वाली है। इस संभावना के अंतर्गत मॉरिशस अफ्रीका और दुनिया के बाकी देशों के साथ पर्यटन और व्यावसायिक आदान प्रदान मजबूत करने तथा निवेश बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।
4: मॉरिशस और अंगोला के संबंधों को आज नई मजबूती मिली है। अंगोला के नए राजदूत ने आज स्टेट हाउस में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच विशेष रूप से व्यापार और खेल के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। रिया रामभुजन, यात्रा मिश्रा।
5: मॉरिशस और अंगोला गणराज्य के बीच कई साझेदारियां हैं, सांस्कृतिक विरासत से लेकर वित्तीय क्षेत्र में सहयोग तक। मॉरिशस में नियुक्त अंगोला के नए राजदूत का एक प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल शुरू करना है। हमारे दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही हम अंगोला में व्यापारिक मिशन आयोजित करने की संभावना पर भी काम करेंगे। मेरा मानना है कि ये दोनों देशों के लिए कई बड़े अवसर लेकर आएगा। मॉरिशस और अंगोला के बीच द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास लगभग 4 दशक पुराना है और अब इस साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
4: सौर ऊर्जा अब समाज सेवा के एक और मिशन से जुड़ गई है। पिछले 40 वर्षों से विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों और युवाओं की सहायता कर रही जॉर्ज शॉल फाउंडेशन में अब सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। MCB के सहयोग से संस्थान में फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाए गए हैं। मॉरिशस में किसी गैर सरकारी संगठन के लिए अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है। जॉर्ज शॉल फाउंडेशन ने MCB के लगभग 20 लाख रुपए के वित्तीय सहयोग से और ऊर्जा को अपनाते हुए फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल स्थापित किए हैं। इस बदलाव से बिजली का खर्च कम होगा और बचने वाले संसाधनों का उपयोग फाउंडेशन में रह रहे बच्चों के कल्याण पर किया जा सकेगा।
6: C'était extrêmement important pour nous de financer ces fameux panneaux photovoltaïques pour la Fondation Georges Charles, dans la mesure où ils avaient besoin d'être autonomes.

0: autonome en production d'énergie.
1: अनुमानित बचत से आगे बढ़कर ये परियोजना एक दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है। इसका उद्देश्य फाउंडेशन को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही उसके दैनिक कार्यों के केंद्र में सतत विकास को स्थापित करना भी है।
2: Ce projet-là est d'un grand soulagement et surtout que tout bon étudiant capable profite de ce financement-là qu'on est capable d'investir dans l'autre projet.
1: इस पहल के कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने सराहना की। अधिकारियों का कहना है कि ये उपलब्धि साबित करती है कि ऊर्जा परिवर्तन केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संस्थानों और समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों के लिए भी एक प्रभावी साधन बन सकता है।
3: गवर्नमेंट पे बेकुल एम्फेसिस लो बन प्रोजे alternatif en ce qui concerne l'électricité parce qu'il y a un problème électricité ça nous bizarre reconnaît et moi espérer que sa initiative là va être suivie par d'autres ONG.
1: खर्च में कमी लाना भविष्य की तैयारी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाउंडेशन को अब उम्मीद है कि उसके भावी विकास कार्यों के लिए नए सहयोगी और साझेदार आगे आएंगे।
4: Le mois, on a une facture de 26 000 roupies, hein? Et donc qui est assez énorme. Pour une petite ONG comme la Fondation Georges Charles, et là maintenant, on ne va presque plus payer, je dis presque plus payer.
1: सौर पैनलों की स्थापना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन के बच्चों के भविष्य में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश भी है। आज परिवार और फाउंडेशन की पूरी टीम इसी उपलब्धि का जश्न मना रही है।
5: Bon, ça fait assez loin parce que, comme on a dit, c'est la première fondation dans mon risque qui fait ça, mais on reste un vrai honneur.
6: Je suis content de continuer à amener mes enfants dans une bonne manière, une bonne habitude pareille.
1: अब यहाँ सूरज की हर किरण सिर्फ बिजली ही नहीं पैदा करेगी, बल्कि फाउंडेशन के बच्चों के लिए नई उम्मीदें और बेहतर संभावनाएं भी लेकर आएगी।
7: विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई दुखद घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 4,500 हो गई। वहीं बैंकॉक में भीषण आग, वियतनाम में नाव हादसा और इंग्लैंड में हीट वेव से बड़ी संख्या में मौतों की खबर है। और साथ ही बात कर रहे थे सुर्खियों में, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है।
8: अमेरिका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार इन हमलों में वायु रक्षा प्रणाली, तटीय रेडार, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ छोटी सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। इन अभियानों में लड़ाकू विमान, युद्धपोत और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं हो सकता। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में जोर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। साथ ही ओमान में कुछ रडार प्रणालियों को भी निशाना बनाने की बात कही है। दोनों देशों के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अब समाप्त हो गया है। इसके बाद दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर साफ दिखाई दे रहा है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। जहाजों की निगरानी करने वाली संस्थाओं के अनुसार इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाली व्यापारिक जहाजों की संख्या घट गई है। कई जहाज सुरक्षा कारणों से अपनी स्थिति बताए बिना इस रास्ते से गुजरे। हालांकि तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहने से पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है।
7: इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
9: पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह ऊंचाइयों पर और पूर्वी इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश होती रहेगी। कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, मात्र दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कुछ बादल घिरा सकते हैं। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 और अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 6:45 बजे होगा।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन है, उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ देने के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, हम बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। एम्पास उजिया बुआशेरीमे, एम्पास उजिया बुआशेरीमे 73 साल की, 73 years old की फरीदा उजिया पैदाश नाम गुलाम हुसैन और जिन्हें फरीदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 10 बजे इनके शौहर फिरोज उजिया के मकान बुआशेरी से उठाकर दफनाने के लिए गांव वाक कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 10 PM। पुचिकॉन ग्रांगुब में 55 साल की, 55 years old की श्रीमती सीता चतुरी जिन्हें सीता के नाम से ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के घर गांगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। सीते उदेसे नंबर 22 पीतों में 58 साल के, 58 years old के श्री सनासी रासी जिन्हें रामायण के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनकी बेटी पल्लवी एस्मियत के घर पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस पीतों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। बोबासे में नंबर 14 नैन बिल्डिंग बोबासे में 80 साल की, 80 years old की श्रीमती कमला देवी चरितर पैदाश्याम रामजी और जिन्हें साकुन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे लाशा पे लौदौती लियन सन बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। इसकी रोड पाए में 72 साल की, 72 years old की श्रीमती देवंती अकू पैदाश नाम लोफा और जिन्हें मैडम गौजा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे महादेव अकू के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्लू एक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1:30 AM। मकाओलेन त्वाबुचिक यूनियन वेल में 81 साल की, 81 years old की श्रीमती सुबामा मुतुसामी पैदाश नाम सावरी और जिन्हें सिंधा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके घर त्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाबुचिक की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Raftar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2.

वेलकम जी, वेलकम आप सभी लोगों का स्वागत है इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शाम। दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइड विद मी गिनिशा ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती। आज हम मंडे 13th ऑफ जुलाई 2026 टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे टुडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू ऑल दोस कपल्स सेलिब्रेटिंग आउट देयर वेडिंग एनिवर्सरीज। तो चलिए जी, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

Well, guys, छह बज के 33 मिनट्स हो चुके हैं और फिलहाल के लिए I've got you another game on RMT Radio मस्ती जहाँ पे आप बन सकते हैं आज का लकी विनर एंड आप जीत सकते हैं टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य इन मॉरिशस ऑन द 25th of July 2026. सवाल बहुत ही आसान है, यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस कॉन्सर्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस वेयर, कहाँ पे होने वाला है ये कॉन्सर्ट? येस, ऑन सैटरडे 25th of July 2026 7:30 बजे शाम को शुरू होने वाला है The concert of Abhijit Bhattacharya in Mauritius. So do participate and do let me know where is it going to happen. The concert is going to take place where? कहाँ पे होने वाला है? On 54991294. Send me the right answer with full name and full address के साथ. Then only you're going to be eligible to participate in the game, my dear. जी हाँ, आप मुझे भेजेगा जरूर सही जवाब. And do let me know you can win a ticket tonight to watch the concert live of Abhijit Bhattacharya in Mauritius. So best of luck to you.

0: Welcome to Radio Mastin.
1: Well guys, 6:45 होने को है और फिलहाल के लिए इट्स टाइम टू अनाउंस द लकी विनर की आज का लकी विनर कौन है. आपको तो पता है कि ऑन आरएन2 रेडियो मस्ती जब भी हम आते हैं तो आपके लिए कैडोज यानी कि गिफ्ट लेकर आते हैं एंड फिलहाल के लिए आई हैव गॉट योर टिकट फॉर द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य. जी हाँ, ही इज गोइंग टू बी लाइव इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 25th of July 2026. और सवाल हमने ये पूछा कि ये कहाँ पे होने वाला है ये कॉन्सर्ट. बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है. यस, द आंसर इज SVICC at Pai, Swami Vivekananda at Pai. And aaj ka lucky winner kaun hai? Kushal Vashisht. He is from Plaine des Roches. So congratulations to you, Kushal. You are the lucky winner aur aap jeet rahe hain ticket to watch the concert of Abhijit Bhattacharya live in Mauritius on Saturday 25th of July 2026 from 7:30 PM at SVICC at Pai. Bilkul, hamare pyare pyare listeners, hum aapko yaad dila de that you can step into a world of nostalgia and relieve the unforgettable voice that really defined Bollywood golden era. Enjoy evening. Wo ek aisa evening hai of timeless jo melodies hai, legendary hits and pure magical music hai. And ticket starts from 850 rupees aur they are available at motika.mu and Rezo Otayo. So hum to bas itna kahenge ki aise aap mauka aapko miss nahi karna chahiye. You can watch this concert live, ji haan, in Mauritius. Our reservation ke liye you can call on the hotline 466-99-99-466-99-99. So aaj ka lucky winner hai Kushal Vashish. Congratulations. You are from Plaine des Roches. Somebody will be calling you from the MBC to let you know how you're going to collect your ticket. Thank you so much for participating.
0: RM2 Radio.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट। रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
0: RM2

तो चलिए जी फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर निशाति से गुड बाय टू यू. कल फिर मिलेंगे इन योर अफ्तार वाइब्स यानी कि 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक. तब तक के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं हमारी प्यारी दिव्या फॉर योर इवनिंग लाउंज.

0: आपके दर पर हम भी चले आए हैं और दौरे भागे चले आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग इंतज़ार करते हैं 7 से 9 के बीच, जहां पर आपको थोड़ा मौका मिलता है रिलैक्स करने के लिए. ऑफ कोर्स हमेशा हम कहते हैं और आज भी कहेंगे, इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप एंजॉयिंग द लवली गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे खूबसूरत गीतों का कारवां, जहां पर आपको मौका मिलेगा टू रिवाइव सम ऑफ द ब्यूटीफुल गोल्डन मेमोरीज, जो आपने शायद ही पलकों तले संजोकर रखे होंगे, या फिर कुछ और ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं. तो हमारे गाने हैं आपको और भी एक्स्ट्रा स्पेशल फील करने के लिए, और आपको एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराने के लिए ऑफ कोर्स वी विल बी वेलकमिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294. यस, मैजिकल नंबर है 5499 1294, या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं ऑन 4028035 400. देखा था मैं कॉन्सेंट पर, लाइन खुली हुई है रात्रि के 9 बजे तक आप हमें फोन कर सकते हैं. लेकिन प्लीज एज यूजुअल, जैसे हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी सारी हमारी यूजुअल कॉलर्स हैं, आज आप थोड़ा बहुत दूसरों को मौका दें तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा. सो चलिए, यहाँ पर 7:08 हो चुके हैं. टू ऑल दोज या फिर ड्राइव करके वापस घर जा रहे होंगे, तो आपको हम विश करेंगे हैव अ सेफ ड्राइव, या फिर आप लोग काम पर होंगे, नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे, आपको बोंकुहार्ज, एंड इफ यू हैविंग योर डिनर राइट नाउ, बन अपेची शुभाहार. चलिए, दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात के 9 बजे तक, और इस म्यूजिकल कारवां को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे नॉन स्टॉप. आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए.
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Musti.

Well, indeed, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो ये फीलिंग्स मन में दबाकर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये जब आप इसको एक्सप्रेस करते हैं ना तभी आपका प्यार और भी दुगना हो जाता है। और हम यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत गाने को सुनने के बाद आप अपने प्यार को थोड़ा सा बढ़ावा दें। चलिए यहाँ पर किसी का मैसेज आया है। हेलो दिव्या, लविंग योर ब्यूटिफुल कलेक्शन एज यूजुअल, जस्ट फिनिश्ड डिनर, नाउ क्लीनिंग किचन। ऑफ कोर्स मोटिवेशन गाने के जरिए आपको मिल रहा है और आप कहती हैं कि दे आर सो सूथिंग एंड रिलैक्सिंग। थैंक यू सो मच दीपिका, आप हैं गुडलैंड से। दीपिका, ऑलवेज आपके पॉजिटिव मैसेजेस हम तक पहुँच ही जाते हैं एंड इट्स रियली नाइस टू सी योर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेजेस कमिंग फॉर अस। एंड ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। और डिनर के बाद जो बड़ा काम होता है वो डिनर को साफ करने का है और बर्तन मांजना, इसके लिए आपको बॉन कुराज। हेलो, नाइस सिलेक्ट स्पेशल डेडिकेशन फॉर माई लव साहिल फ्रॉम जानवी, ऑफ कोर्स आपके लिए हम चलाएंगे। यहाँ पर आप कहती हैं, नमस्ते, कैन यू प्लीज डेडिकेट अ सॉन्ग टू ट्वीन सर रेवांश एंड रेयांश फ्रॉम वाइफ वशिनी एंड ममा वेदा। आप हैं विजय पुलुदू ऑफ हाईलैंड्स, विजय जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग हमारा साथ देते रहे। एंड द नेक्स्ट ड्रॉ गोज आउट फॉर करिश्मा एज वेल, जिनके लिए हमेशा मैसेजेस एंड डेडिकेशंस आते रहते हैं। तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ आपको हम एंटरटेन करेंगे और साथ में आपको अच्छा फील कराएंगे। जब आप म्यूजिक सुनते हैं ना तो इट शुड बी अ गुड म्यूजिक, तभी जो फील गुड फैक्टर है वो डोमिनेट करता है। सो ऑलवेज ऑलवेज जो भी सिचुएशन हो स्टे कनेक्टेड टू गुड म्यूजिक, क्योंकि ये एक थेरेपी होता है। यस, गुड म्यूजिक इज अ थेरेपी जहाँ पर आपको मौका मिलता है टू ड्रेन ऑल द नेगेटिव

0: एनर्जी एंड टू रिवाइव योरसेल्फ और अपने पॉजिटिव एनर्जी को जितना आप इस पे फोकस करेंगे गुड थिंग्स विल कम बैक टू यू. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे सोच रखें एंड अच्छे अच्छे गाने सुने. और वैसे गुड म्यूजिक से अच्छे सोच भी आते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए हमारा साथ देते रहिएगा. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: वेल फ्रेंड्स ऑलरेडी 7:33 एंड चलिए कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम जरूर बढ़ेंगे. हेलो दिव्या, हाउ यू. गाने तो बहुत अच्छे हैं, अगर हो सके तो एक छोटी सी जगह मिल सकती है गाने के लिए. तुम हो मेरा प्यार फ्रॉम द मूवी हॉन्टेड. हे थैंक यू सो मच रोशनी हमारा साथ देने के लिए. वैसे लेट मी टेल यू, ये गाना ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट में शामिल है बट फॉर नेक्स्ट वीक. एंड अभी के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी चला लिया तो प्लेलिस्ट के गाने रिपीटेड हो जाएंगे, तो हम ट्राई करते हैं. हाय हरे कृष्णा दिव्या जी, आपको भी हरे कृष्णा. एंड यू ऑन योर वे टू एयरपोर्ट स्टिल वर्किंग, सो आपको बोन कुराज एंड स्टे सेफ एंड ड्राइव केयरफुली आपको हम कहेंगे. और आपको एक बर्थडे वाला गाना सुनना है आपकी कलीग बेटी के लिए दीक्षा. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योरसेल्फ. एंड आप कहती हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एज वेल फ्रॉम द होल टीम ऑफ मोजेट हॉलीडेज. थैंक यू सो मच कि आपने हमारा साथ दिया. एंड चलिए अगला गाना हम आप लोगों के लिए डेडिकेट करेंगे जो इस वक्त अभी तक काम करते करते हमारा साथ रहे हैं. बिल्कुल हम आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए तो अच्छे अच्छे गाने लेकर आए हैं ताकि आपका काम भी हो जाए और हमारे गाने कभी ना ख़त्म हो. वैसे काम करते वक्त भी आप अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा. कभी ऐसा होता है ना कि आपका बहुत ही लोड ऑफ वर्क हो जाता है या फिर आपको प्रेशर फील होता है, लेकिन गाने सुनने के बाद आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं और इसको ही रिलैक्स कहना करते बोलते हैं. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा रिलैक्स भी करें. कभी इतना वर्कलोड हो जाता है कि इस प्रेशर के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं. और चलिए अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं एंड आपका खाना अभी बाकी है तो आप ज़रूर अपना डिनर ले लीजिएगा. इन द मीन टाइम हम तो साथ हैं ही टिल 9 PM. जितने भी सारे लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं आपको हम कहेंगे हैव अ सेफ ड्राइव विद RM2 रेडियो मस्ती.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: शायद गाने सुनने के बाद आप लोग अपने मोबाइल की ओर देख ही रहे हैं और बस वेट कर रहे हैं कि कब जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आ जाए। लेकिन अगर आप वेट करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। कभी कभी इंतज़ार करने के बजाय वी नीड टू एक्ट एंड रिएक्ट। तो अगर आपकी तरफ से उनको एक मैसेज मिल जाए तो कितना खूबसूरत होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी rather than just expecting we need to start reacting। और जब आप कोई एक्शन लेंगे तभी तो इसका रिएक्शन आपको मिलेगा। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्यार में थोड़ा बहुत आपकी तरफ से भी वो मेहनत दिखाई दे। सो चलिए यहाँ पर आप हमेशा ये याद रखिए कि प्यार में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि दूसरी तरफ से भी वो एक्सपेक्टेशन जायज़ हैं और आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो वी हैव योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर टिल 9 PM ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है। डोंट फॉरगेट यू नीड टू कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस, क्योंकि आपके मैसेजेस को ज़रूर हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 5499 1294 पर नॉर्मल मैसेजेस या फिर व्हाट्सअप के जरिए आपके मैसेजेस को वेलकम कर रहे हैं। और 4028235 पर भी लाइन खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है, ऐसा सिचुएशन तो हर प्यार करने वाले के साथ हुआ होगा, इतनी गारंटी तो हम जरूर दे सकते हैं। वेल 8:07 हो चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का हम दिल से स्वागत कर रहे हैं। वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। वक्त कैसे निकल जाता है कभी पता ही नहीं चलता है, स्पेशली जब गुड म्यूजिक का साथ होता है। तो चलिए, आई एम वेरी श्योर कि आपको भी पता नहीं चल रहा है कि ये वक्त कैसे निकल रहा है और कैसे कट रहा है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप जैसे ही इस वक्त को स्पेंड कर रहे हैं, इसको ब्यूटीफुली स्पेंड कर रहे होंगे, एंड यू एडिंग सम ब्यूटीफुल मेमोरीज, एंड इस मेमोरीज को आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हमेशा ये खूबसूरत यादें काम आते हैं। मतलब जब भी आप उदास होते हैं, दुखी होते हैं, यू हैव अ रीज़न टू स्माइल, तभी हम पलट कर पास्ट में देखते हैं और तभी जाकर एहसास होता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ, इसीलिए तो हमेशा हम कहते हैं कि ट्राई टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ब्यूटीफुली, ताकि हमेशा आप ज़िंदगी में जब भी उदास हो ना, तो आपके पास बहुत सारे रीजंस हो टू कीप ऑन स्माइलिंग। एंड ये सारी जो मेमोरीज है ना, ट्रस्ट मी, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो चलिए, यहाँ पर हम भी फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आपके प्यार और सपोर्ट के साथ साथ। आपके मैसेजेस भी पहुँच चुके हैं ऑन 5499-1294, बिल्कुल पढ़ेंगे आपके मैसेजेस थोड़ी देर में। लेकिन अगर आप उस पार से हमारा साथ दे रहे हैं और आप अभी तक सोच ही रहे हैं कि मैसेजेस भेजना है नहीं भेजना है, तो आपको हम बता देते हैं कि यही मौका मिलता है, यानी कि ये एक हम बहुत ही ख़ास तौर से आप लोगों को पैम्पर करने के लिए ही ये सेगमेंट रखते हैं, जहाँ पर वी कीप ऑन रीडिंग योर मैसेजेस। तो ये मौका बिल्कुल ना गवाएं, एंड कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: इतना करो ना मुझे प्यार, कभी कभी प्यार करने वाले इस लाइन को बोल ही देते हैं, क्योंकि कभी ऐसा लगता है ना कि ये हकीकत है या सपना है, लेकिन अगर आपको सच में लगता है कि आप ऐसे खूबसूरत प्यार को डिज़र्व करते हैं, खूबसूरत फीलिंग को डिज़र्व करते हैं, तो वाई नॉट, चलिए इस हकीकत को ज़रूर जिए एंड इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जिए कि लोग कहें कि वाह क्या प्यार है और क्या ज़िंदगी है। वैसे प्यार में और ज़िंदगी में जब इन दोनों का मिलन होता है ना, तो इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिक। और इस मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ एक प्यार भरा दिल आपको ज़रूर चाहिए होता है, और इस प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए एंड यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड यू नीड टू बी ब्यूटीफुल फ्रॉम इन एंड आउट। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि प्यार को हमेशा आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लव, लव हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि नज़र और नज़रिए की बात है, और उसी तरीके से बस दिल की बात होती है, और दिल ही दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ अनकही बातें होती हैं, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनको आप सुनना पसंद करते हैं और इसका इंतज़ार करते रहते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतने ही प्यार से कनेक्टेड हैं हमारे साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज। चलिए यहाँ पर अगला गाना जाएगा फॉर योर फैमिली। आपकी दो प्यारी बेटियाँ हैं श्रिया सृष्टि, आपके हस्बैंड हैं धनंजय, छोटी प्यारी सी लाडली आध्या जो एक महीने का हुआ है, गोज आउट फॉर मामा दिया एंड पापा अश्विन फ्रॉम सत्यता, एंड चलिए उनको बहुत बहुत सारा प्यार। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले खूबसूरत गाने की ओर, एंड साथ में यहाँ पर आप कहती हैं हेलो एवरी वन, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर माई फ्रेंड रीना पुलवन, वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव सच ए काइंड एंड नोबल फ्रेंड लाइक हर फ्रॉम बेस्टीज। ओहो यहाँ पर आपका मैसेज इनकम्प्लीट आया है, इफ़ पॉसिबल व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर याद करिएगा, we would like to read the whole and the complete message. तो चलिए यहाँ पर अगला गाना goes out to each and every one जो इस वक्त हमें बहुत ही प्यार से सुन रही है।
1: Evening lounge,
2: evening lounge,
3: RM2,
4: Radio Masti.

0: वैसे कहते हैं ना कि द बेस्ट एटीट्यूड इज ग्रैटिट्यूड, और दिल को मेहरबान होना ही चाहिए, स्पेशली अगर आपको ऐसा शख्स मिल गया है जिंदगी में जो आपको हमेशा बस स्पेशल फील कराता हो। 8:35 हो चुके हैं और उस शख्स के साथ साथ हम भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं टू मेक यू फील एक्स्ट्रा स्पेशल विद आवर ब्यूटीफुल गाने। एंड चलिए आपके कुछ और मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो नमस्ते दिव्या जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको भी टीना जी, हाउ आर यू, एंजॉयिंग द प्लेलिस्ट एंड सारे आपके फेवरेट गाने ही चल रही हैं जानकर बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट वन गोज आउट टू योर स्वीट फैमिली एज वेल, आपने हमारी फैमिली के लिए डेडिकेट किया है तो हम आपकी फैमिली के लिए डेडिकेट करेंगे। आपको भी शुभरात्रि, गॉड ब्लेस यू टू। एंड चलिए नेक्स्ट गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर आशा जी जो इस वक्त बहुत ही प्यार से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी आप हैं शातु बनारस से, अगला गाना जाएगा फॉर आशनी रेखा सुरेखा मदब फैमिली और मेरे लिए, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। एंड चलिए नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू आशा जी, वैसे आप रहती हैं लिस्ट का लिए एंड यू वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर योर होल फैमिली, तो चलिए बिल्कुल ये अगला गाना गुज आउट टू ईच एंड एवरी वन जो 90s गाने को हद से ज्यादा पसंद करते हैं।
1: Evening Lounge, Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. Well, friends, 8:53 already. We have this beautiful Gaana, Alka Yagnik and साथियों की आवाज़ों में एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम द मूवी आरजू. एंड चलिए टू ऑल दोज जो इस हफ्ते को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, ये गाना खास तौर से आपके नाम. एंड चलिए छोड़े जा रही हैं आपको इसी खूबसूरत गीत के साथ. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल सेम टाइम 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब बाखैर.

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिज गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी। सच तो ये है कसूर अपना है।

0: हेलो हेलो, विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग माय डियर लिसनर्स। कैसे सब ठीक? सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल अट्यून टू रेडियो मस्ट, एक बार फिर नीतू के साथ इट्स लेट नाइट ग्रूव्स, वो भी रात्रि के 12 बजे तक। सो सर्दी के इस करारे मौसम में बस गीतों का मजा लेते चले और 3 घंटों के इस सुरेले सफर में हमारे हम सफर बनते चले। और क्या चाहिए,
1: चाहेंगे तुम्हें बस

जिंदगी के बारे में हम सबकी अलग अलग सोच है, है ना। कोई कहता है कि जिंदगी खूबसूरत है, कोई कहता है कि जिंदगी इज पेनफुल। वेल व्हाट्स लाइफ। वैसे जिंदगी जो है ना, इसका कोई भरोसा नहीं होता, कल किसने देखा है। इसलिए हर सुबह जब आंखें खुले तो ये सोचिए कि शायद ये दिन हमें एक नई कहानी लिखने के लिए मिला है। दिल खोल कर हंसिए, अपनों से प्यार कीजिए, माफ कीजिए, हाँ और खुद को भी माफ कर दीजिए। अगर आज ही जिंदगी का आखिरी दिन हो तो अफसोस नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए। बिंदास जीना ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत अंदाज है दोस्त।

तक सिर्फ लोगों की सोचते रहेंगे। कभी तो अपने दिल की भी सुनिए, वो गाना गुनगुनाइए जो पसंद हो, वो जगह देखिए जिसका सपना देखा है, और उन लोगों को गले लगाइए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। अगर हर दिन को आखिरी दिन समझ कर जिएंगे तो हर लम्हा एक त्योहार बन जाता है।

खुशियां बैंक बैलेंस की तरह जमा करने की चीज नहीं है, उन्हें हर रोज जीना पड़ता है। चाय की एक प्याली में भी अभी चाय की आप चुस्कियां ले रही होंगी, बारिश की बूंदे, आहा सर्दी का मौसम, बारिश तो होगी, एक पुराना गीत या फिर किसी अपने की मुस्कान, यही तो है असली दौलत। इन लम्हों को जी लीजिए, क्योंकि यही जिंदगी का असली खजाना है।

अगर आज आपके उदास चेहरे पर एक मुस्कान ला सके ना, तो समझ लीजिए कि आपका दिन सफल हो गया। पैसा, शोहरत और नाम एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन किसी के दिल में छुई हुई खुशी हमेशा जिंदा रहेगी। That's why बिंदास होकर मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दीजिए। Be the inspiration.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

लोग डरते रहते हैं, कभी इससे कभी उससे कभी आई डोंट नो व्हाट। सबसे बड़ा दुश्मन यू नो क्या है? मौत नहीं है बल्कि डर है। डर सपने पूरे होने से रोकता है। अगर आज ही आखिरी दिन हो ना, तो फिर किस बात का डर? अपनी जिंदगी को हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ जिए। हर कदम पर कहिएगा, मैं जीने आया हूँ, सिर्फ वक्त गुजारने नहीं।

वक्त का इशारा है कि ऑलरेडी सगन आवर में पहुंच गए हैं. इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स एंड रियली होप गानों के साथ साथ जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं ना, इट्स अबाउट लाइफ. कभी कभी हम लाइफ जीना ही भूल जाते हैं और प्यार को कभी कल पर मत छोड़िए. जो दिल में है इज्जत और सच्चाई के साथ कह दीजिए. गाना तो सुना ही होगा, कल हो ना हो. अपनों को बताइए कि वो कितने खास हैं. शायद कल मौका मिले या ना मिले, मोहब्बत जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है.

जिंदगी प्यार का गीत है और जिंदगी एक मधुर संगीत की तरह ही है। हर दिन एक नई धुन है और हर पल एक नया सुर। कभी खुशी, कभी गम, कभी हंसी, कभी आंसू, सब मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इस गीत को पूरे दिल से गुनगुनाइए।

देखो भाई क्या फायदा सर पकड़कर रोने का हाँ जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स आसान तो है नहीं लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी नफरत और गीले शिकवे सिर्फ मन को भारी बनाते हैं माफ करना सीखे क्योंकि हल्का दिल ही खोलकर जी पाता है हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है

0: रही हूँ मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

दोस्त सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए भी होते हैं। छोटे छोटे कदम भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आज आखिरी दिन हो ना, तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि हमने अपने सपनों की तरफ कदम जरूर बढ़ाया।

आसमान शायद अभी आसमान साफ हो, ठंडी हवाएं, दैट्स रियली स्वीट, उगता हुआ सूरज, कल तो हम जरूर देखेंगे, हाँ अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, और चमकता हुआ चांद, इन सब में ईश्वर की झलक होती है। थोड़ा वक्त प्रकृति यानी कि नेचर के साथ बिताइए, आप पाएंगे कि असली सुकून किसी चीज में नहीं बल्कि इन अनमोल लम्हों में छुपा होता है।

लवली गाना इन लेट नाइट ग्रूव्स और बस थोड़ी देर में ये सफर भी खत्म हो जाएगा लेकिन अभी टाइम है हाँ में से हर छोटी जीत का जश्न मनाइए किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए कल करे सो आज करे सो आप आज जिंदा है सांस ले रहे हैं मुस्कुराने की वजह है बस इतना ही काफी है जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए

जब इंसान दिल से जीता है तब हर हार भी एक सीख बन जाती है और हर जीत एक नई उम्मीद। इसलिए नतीजे की चिंता छोड़कर हर पल को पूरे जज्बे के साथ जिए।

सब किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, है ना? तो फिर आप अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करते हो? देखो भाई, हम तो मानते हैं कि रिश्तों को वक्त दीजिए, मोबाइल से ज्यादा अपनों की आंखों में देखिए, उनके साथ बैठकर हंसी बांटिए। जिंदगी के आखिरी लम्हों में इंसान को सिर्फ अपने लोग याद आते हैं, चीजें नहीं। हर सुबह जब उठे ना तो ये कहे, यही मेरा दिन है। कल की फिक्र और कल के अफसोस को आज पर हावी मत होने दीजिए। आज का दिन ही सबसे बड़ा उपहार है, इससे इसे पूरी शिद्दत और पूरी खुशी के साथ जिए।

चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे दोस्त कि बिंदास जीना मतलब बेपरवाह नहीं होता बल्कि हर पल की कीमत समझना होता है हंसी बांटिए गीत सुनिए अच्छाई कीजिए सफर का मजा लीजिए और हर रात शुक्र अदा कीजिए कि एक और खूबसूरत दिन जीने को मिले अगर कल ना भी आए तो आज इतना खूबसूरत हो कि दिल कहे मैंने जिंदगी को पूरी तरह जिया है टेक केयर बाय बाय शुभ रात्रि

0: Tak, tak, Bollywood.
1: Radio must be.

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते